0: उनमें के अक्सर महज गुमान की पैरवी करते हैं और कुछ शक नहीं कि गुमान हक के मुकाबले में कुछ भी कारामद नहीं हो सकता। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से वाकिफ है, और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई इसको अपनी तरफ से बना लाए। हाँ, ये अल्लाह का कलाम है, जो किताबें इससे पहले की हैं उनकी तस्दीक करता है और उन्हीं किताबों की इसमें तफसील है। इसमें कुछ शक नहीं कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इसे खुद ही घर लिया है? कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम भी इस तरह की एक सूरत बना लाओ, और अल्लाह के सिवा जिनको तुम बुला सको बुला भी लो। हकीकत यह है कि जिस चीज के इल्म पर यह काबू नहीं पा सके उसको नादानी से झुटला दिया, और अभी इसकी हकीकत इन पर खुली ही नहीं। इसी तरह जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने झुटलाया था, सो देख लो कि जालिमों का कैसा अंजाम हुआ।
1: तो अमीन

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

जल्ला दूर आजा जो नजर आए कहीं जलवा रूए शगे अबरार जिसके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए जिधर से वो गुजर जाए वो हीरा चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार इश्क के रंग में रंग जाओ।

पार्टी खाते जी ऑफिस में तलब कर एहतजाज खत दिनो अफगान तालिबान का फितनाल खारिज फितनाल हिंदुस्तान दाश खिलाफ़ तस्दीक जोगी कार्रवाई जो मुतालबो परदेही तर्जुमान मूजिब अफगान तालिबान दहशतगर्द टोलन खिलाफ़ असरायती कार्रवाई में नाकाम है। पाकिस्तान पांजे कौमी सलामती ए शहरन के तहफ़ुज़ ते भी का भी सौदेबाजी न कंदो। पाकिस्तान बुज़दिलाणी हमले के जिम्मेवार खिलाफ़ असलायती कार्रवाई जो हक महफूज रखे तो। अफगान तालिबान पांजी सरजमीन बिन मुल्कन खिलाफ़ दहशतगर्दी लाइ इस्तेमाल थियण की इजाज़त न दियण वाले वायदे ते अमल करे गडल कौमन ए आलमी इदारन की रिपोर्ट्स में अफगान सरजमीन ते दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी ए सरगर्मियों जो जिक्र मौजूद है। बनू में 9 मई ते दहशतगर्द हमले दौरान 15 पुलिस अहलकार शहीद थी व्या हुआ।

पेट्रोल महांगो थियण जो कारण 117 रुपया प्रति लीटर लेवी लॻाइण आहे। IMF बोर्ड जे इजलास खां अॻु लेवी लॻाइणु ज़रूरी हो। पेट्रोलियम वज़ीर ऐं पेट्रोलियम डिवीज़न जे अख़्तियारनि जो सेनेट जी स्टैंडिंग कमेटी आॾो इतराफ़। कमेटी मेंबर सैफला अब्रोज जे सवाल ते पेट्रोलियम वज़ीर चयो त IMF सां पेट्रोल ऐं डीज़ल ते लेवी 80 रुपया तय आहिनि, उनखे IMF बोर्ड जे इजलास खां अॻु पूरो करणु ज़रूरी हो। पेट्रोलियम डिवीज़न अख़्तियारनि मुल्क में DAP भाण जी खोट जो निक्षाप कंदे चयो आहे त पाकिस्तान में यूरिया मौजूदु आहे, पर DAP भाण जो मसलो थी सघे थो। हींअर मुल्क में DAP जो ख़ाम माल बि न आहे। थी सघे थो कुझु ॾींहनि खां पोइ मुल्क में DAP दस्तियाबु न हुजे। DAP जो ख़ाम माल आमनई हरमोज़ वसीले ईंदो हो। हींअर वॾो बुरान फूड सिक्योरिटी जो आहे। पेट्रोलियम वज़ीर अली परवेज़ मलिक पारां DAP ख़ाम माल जी दस्तियाबी यकीनी बणाइण लाइ वज़ीर आज़म सां ॻाल्हाइण जी हिदायत।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: माँ खाधो गरम करे थी वठा।
3: पुद थकल थकल पी लगे घणी खैरियत
2: तवा जो पुट सुमई न थो पूरी रात माँ तो खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवा
4: मेरी थकन को भी तेरे
3: तू हाल वे माँ अच्छा तू हाल तू

0: हे वट एड़ियूं शयूं खांदी कर सेहत ठीक रहंदी
1: तव्हां खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी त मां कंहिं खाईंदमि
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पीअण वारी माउ जी बेहतरीन ग़िज़ा भाउ ऐं ॿार ॿिन्ही जो हक़ आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: अजरक के रंगों से रंगी
7: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
6: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
7: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: किथे का ज़्यादती थी आ का ग़लत ॻाल्हि थी आ हुन जो अज़ालो थियण मुंहिंजो पुट अकबर अब्बास फॉरन रिटर्न बि आहे हाईएस्ट मार्क्स थियोसि रिटर्न इंटरव्यू में पास न थियो इहा ख़बर त कंहिं कोन ई अथव नासिर शाह जे पुट खे जेका आहे पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरी न मिली
1: में के फोरम्स हूंदा जिते हुन जी शिकायत जेको आहे उहो ॿुधी वञे
2: हा इहे मूंखे न आहे ख़बर को हीअ चीज़ आहे को कंहिंजी इंवॉल्वमेंट आहे अगरि पहुती त सीएम साहब कॾहिं बि हुनखे बर्दाश्त न कंदो
3: अगरि इस तरह की बात रेज हुई है तो इसका ज़रूरु जो है डिपार्टमेंट जो है वो इसकी तह तक पहुचेगा और दिखेगा हम कभी भी नहीं चाहेंगे की हमारे नौजवान जो है उनके साथ कोई भी ग़लत हो
4: सिंध हुकूमत हिन खे जांच कराईंदी ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ऐं आवाम बि इहो ई चाहींदी त फ्री एंड इम्पार्शियल अगरि इंक्वायरी थींदी त हुन में सचो साबित थी वेंदो ऐं जेकी शइ ग़लति हूंदी उहो घटि थींदी
5: सर्विस कमीशन ते पंहिंजा नवाज़ी ऐं मेरठ लिदार जा इल्ज़ाम सिंधी चूंडियल नुमाइंदनि जो मौक़ो बि साम्हूं अची वियो केटीएन न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो त हुकूमत मेरठ ते यकीन रखे थी मेरठ जे लिदार बाबति कंहिं वटि शायदियूं आहिनि त पेश कयूं वञनि मुंहिंजो पुट बि लिखित कमीशन जो इम्तिहान पास कयो हो इंटरव्यू में फेल थियो ग़रीबनि जा ॿार बि कमीशन में पास थिया हुनजो किथे बि ज़िक्र न पियो थिए हुकूमती दुर्जुमियल वज़ीरनि ऐं एम पी एस जो रुगो इल्ज़ाम न लॻणु घुरिजे इदारा मौजूदु आहिनि शायदियूं अचणु घुरिजनि वॾो वज़ीर मुराद अली शाह मामले जी जांच कराए रहियो आहे पास थींदड़ ख़ुशि ऐं फेल थींदड़ मायूस थींदा आहिनि इल्ज़ाम न लॻणु घुरिजनि

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
2: फातिह मेहरान।
3: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो, जीअं हुजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
4: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखिन जी खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हन सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोजानो सुबुह 9 वगे खां शाम 5 वगे ताईं, बरोज जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
5: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hamay Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hamay Diamond Glow Bleach Cream.
2: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो. सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो. अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारू ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे. होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे. एड्रेस: सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन. वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763.
3: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में. डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
4: सिंध के माथे का झूमर,
5: DFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़.

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: நாள் ரண சதா டாப்புத்து
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kail. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram, ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, ये FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: एच ब्यूटी ट्री, फाइव डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियन की खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोजानो सुबुह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई, बरोज जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधिक मशोरे ते जे लाए 0327-99-84-763।
5: अजरक के रंगों से रंगी,
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
6: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

साथ साथ कॉमेंट्स को एंटरटेन करें क्या? चले करते हैं. इस मां किशोर कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. नजीर खोसो सोबरपुर बलूचिस्तान से हमें सुन रहे हैं. मोहम्मद साले लगारी हमें सुन रहे हैं. नियाज हुसैन मलिक हमें सुन रहे हैं. इसके अलावा जी इस मां किशोर बहना आज अगर मेरी कॉल अटेंड हो तो मैं ऊपर जाऊं वरना बहुत गर्मी है. लगा ले जब लग जाए ना एकदम तभी आपने ना दौड़े लगानी है छत की और ऊपर चले जाना है. सही है, ऐसे कर लें.

0: बस बात का एतराम करो, मेरे जस बात का एतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो।
1: ओके, किसी को डेडिकेट करना है? ये सवाल मैं पूछना छोड़ दूं आपसे? चले जबरदस्त। और कुछ? हाँ जी।
2: अच्छा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो थैंक्स कहना था मिसेज अली को।
1: हाँ।
2: जो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करती हैं और उनकी वजह से ही मैं जो है ना छत पे आना जो है ना ज्यादा शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो सही है, कुछ ना कुछ तो किसी न किसी को तो फायदा होता है, अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल ऐसा ही। और सर दर्द ने भी की थी वैसे आपकी तारीफ?
2: हाँ हाँ, सर दर्द के लिए वो हमेशा मेरे लिए दो लाइनें लेकर आते हैं, आज मैं उनके लिए दो लाइनें लेकर आया हूँ।
1: हाँ जी, इरशाद।
2: किस कदर शुक्रिया अदा करूँ आपका, किस कदर शुक्रिया अदा करूँ आपका, अल्फाज नहीं मिलते। आवाज मेरी इतनी खूबसूरत ना होती जो आप जैसे कदरदान ना होते।
1: हा हा हा हा हा, क्या बात है। वैसे ये मेरे लिए भी होना चाहिए।
2: आपको सबसे पहले है ना?
1: हाँ जी बिल्कुल।
2: सबसे पहले तो आपके पास ही आए, उसके बाद ये बहने हमारी जिंदगी में आई और इन्होंने जो है ना इतना अप्रिशिएट किया तो अच्छा लगता है। अल्लाह करे सब खुश रहे।
1: ओके जी, आमीन सुमा आमीन। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये रहा आपका गाना। अच्छा, इस गाने के शुरू में ये जो काफी सारा म्यूजिक ऐड कर दिया है ना, यहाँ से

0: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खेल महासे और बेजानपन, अब सबको कहें अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: ओके, इस गाने का टाइटल क्या है?
1: लाइट ऑफ करके गाना है और फिल्म का नाम तो याद नहीं है मुझे.
0: नहीं द कलर का. ओके,
1: और जो मैंने प्यार किया आपके लिए.
0: ठीक है.
1: जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता. जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता. हार हार से जान से प्यारा नहीं मिलता. है जो पास उसे संभाल के रखना. है जो पास उसे संभाल कर रखना. खोकर वो कभी दोबारा नहीं मिलता. मौला आपको सलामत रखे. सब सुनने वालों को अली मोहम्मद बंबरों की तरफ से बहुत सलाम और दुआएं.
0: ओके जी, थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. और मैं गाना साथ साथ आपका सर्च कर रही हूँ और ये नाहिद अख्तर का तो नहीं लेकिन ये नूर जहाँ का आ रहा है और कोई सैड सॉन्ग ही आ रहा है. चलिए मैं इसको दोबारा सर्च करती हूँ. तब तक हम एक और कॉल लेते हैं. एंड 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग. एंड हम आप लोगों की कॉल्स तो लेंगे लेकिन उससे पहले एक सॉन्ग प्ले करेंगे. एंड एक और सॉन्ग इज एक और सॉन्ग चेक करें जरा. नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. सुनेंगे, इंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे.

किसी ब्यूटीफुल सॉन्ग. और आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरीके से है कि आप लोग मुझे कह के दिखाएंगे, काशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली. ठीक है, ये कहना है, जल्दी जल्दी कहना है, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें. काशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली. मेरे ख्याल से आज का टंग ट्विस्टर बोलने में बहुत ज्यादा इजी है ना. तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें. एंड हियर कम्स ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय बिलाल सईद. इसको सुनेंगे, सुनते सुनते जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक. दोनों के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank of Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: पाकिस्तान ईरानी जहाजन की मौजूदगी बाबत सीबीसी न्यूज ने रिपोर्ट के गुमराह कंदड़ करार ॾेई छॾियो। पर ॾींहुं खाधे मौजूद इस्लामाबाद विहारण लाइ अमरीका ऐं ईरान जा केतिरा ई जहाज पाकिस्तान पहुता, जिन जो मकसद सफारती अमले ऐं सिक्योरिटी टीम ने गाॾियुनि वारे अमल खे आसान बणाइण हो। कुझु जहाज ऐं अमलो गाॾियुनि जे ॿिए दौर खे नज़र में रखंदे पाकिस्तान में मौजूद रहिया। ॿियो दौर अञा बाज़ाबता शुरू नाहे थियो, पर आला सतह सफारती राबता जारी आहिनि। ईरानी परॾेही वज़ीर जो पाकिस्तानी दौरे में मौजूद आहिनि इंतज़ामी ऐं लॉजिस्टिक सहूलतुनि ज़रिए मुमकिन थियो हो। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी जहाज बि जंगबंदी दौरान आयो हो, जंहिंजो कंहिं बि क़िस्म जी फ़ौजी हंगामी सूरतहाल या हिफ़ाज़ती क़दमनि सां तालुक़ु न आहे। ख़्यालनि ते ॿधल बयानीअ जो मक़सदु इलाक़ाई इस्तेहाम ऐं अमन वारनि कोशिशुनि खे नुक़सान पहुचाइणु आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी क़यादत खे बेईमान ऐं बार बार मौक़िफ़ तब्दील करणु करार ॾेई छॾियो। हिन तेहरान ते रिजाल यूरेनियम कढण जी इजाज़त ॾियण वारे मुआदे ते बि पोइते अटण जो इल्ज़ाम लॻाए छॾियो। व्हाइट हाउस में साहिबनि सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान अमरीका जंगबंदी वेंटिलेटर ते आहे, तेहरान ॻाल्हियुनि ते इतफ़ाक़ करण बाद फ्री वञे थो, कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदासीं। तेहरान सां अञा बि मुआदे जा इम्कान मौजूदु आहिनि। عوام جی حقن کے نہ منع جو نتیجو ناکامی کا سوائے کچھ بھی نہ ہوں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد کاب باقر کاری بات چیز ایران ایٹمی پروگرام سے ٹھا نہ کند۔ تہران کے ڈنل 14 تجویزن جو بیو کو متبادل نہ ہے۔ تہران امریکی دیر کی قیمت ٹیکس ڈیندڑ امریکی شہر کے بھرنی پوندی۔

लबनान में कर्द इसराइली फौजों हमलों, 6 जणा शहीद, 7 जख्मी। इसराइली फौज सूर के शहर कफिर दोनों में घर से हमलों किया, घर मिट्टी के ढेर में तब्दील थी पो। लक्ष्मीपुर जे सवाइ नौरंग में धमाकों, 7 जणा शहीद, 17 का वधीक जख्मी। शहीदन में ब पुलिस अहलकार भी शामिल। अस्पताल इंतजामिया मूजिब धमाके बाद 7 जणा जा लाश अस्पताल लादा विया आहिनि। पुलिस मूजिब धमाके में ट्रैफिक पुलिस जा ब अहलकार भी शहीद थिया आहिनि। वधीक जांच जारी आहे।

कराची शहर के मुख्य इलाकन में टे जणा कतल एक जख्मी गुलशन मेमार भर से साहिब खान पुट मुसाफिर के कतल किया वो बल्दियावार इलाके में नॉर्थन बाईपास से एलपीजी गैस कंपनी वेजो फायरिंग नौजवान गुलाबपुट यूसुफ कतल जो सब्जी मंडी वेजो हिमोरा गोट वट फायरिंग में सैदुल्ला कतल जो एक जख्मी थोड़ा

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. और इसके अलावा जी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं हमारा एक अलग सेगमेंट जो कि हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज बोलो तो माने. बोलो तो माने में हम करेंगे ये कि एक अलग टंग ट्विस्टर आपसे सुनेंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बता चुकी हूँ. सो आज का जो टंग ट्विस्टर है वो है, काशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली. काशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली, ये कहना है आपने. ये कहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, यानी कि जो बंदा अच्छा अच्छा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा सेगमेंट को. सो देखते हैं कि आज कौन अच्छा अच्छा टंग ट्विस्टर कहके दिखाता है. हम कॉल्स लेंगे आप लोगों की 03000113488. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग कॉल पे नहीं आना चाहते वो हमें सिंपली मैसेज कर सकते हैं 8881 पे. सो अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है FMEDRGA सखर. इस पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है की, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं.

0: अच्छा साथ साथ कुछ मैसेजेस को इंटरटेन करते हैं जो कि मुझे रिसीव हुए हैं बहुत सारे. हमें मैसेज किया है सुमेरा ने. सुमेरा कहते हैं हाउ आर यू. मैं अच्छी हूँ. सुमेरा आप कैसी हैं? अच्छा इसके अलावा हमें मैसेज आया है राणा ताहिर भाई फ्रॉम मीरपुर खास. कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर रुखसार, जिंदगी गुलजार है, हमको FM 88 से प्यार है, पाक आर्मी को सलाम. अरे वाह ये तो शेर बन गया, वाओ. अच्छा इसके अलावा तालुका सिंदरी से हैदर बख्श शर हमें सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच हैदर बख्श शर. और कॉलर मौजूद है लाइन पे मेरे साथ, कॉलर लेते हैं. हेलो.
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं?
1: मैम सागर बात कर रहा हूँ.
0: सागर भाई कैसे? ठीक ठाक.
1: खैरियत है? ठीक ठाक. क्या खैर तो है मैम? 5 मिनट पूरे हो गए कॉल चल रही है.
0: 5 मिनट पूरे हो गए कॉल चल रही है. अच्छा 5 मिनट से कॉल चल रही है. ये देखे ना कि लग गई आपकी बैलेंस. बैलेंस तो नहीं मेरा छुआ.
1: कर्जा ही मुक गया.
0: अच्छा कर्जा लिया हुआ था. कर्जा उतर गया.
1: भी मुकने वाला है.
0: अच्छा ये बात है. कर्जा भी खत्म होने वाला है. लिया हुआ तो फिर उतारेंगे कैसे?
1: बस लिया मैंने तो नहीं उतारूंगा.
0: चलें जबरदस्त इसी बात पे फिर टंग ट्विस्टर कह के दिखा दें.
1: गाने का सेगमेंट खत्म हो गया.
0: गाने का सेगमेंट तो खत्म हो गया.
1: आए, आए, आए,
0: आए, आए, आए, आए, आए, आए, आए, आए.

0: तुम्हें कि कौन ने काली कंघी निकाली, काशान ने
1: अरे वाह
0: कमरे के कौन ने
1: वेरी वेरी वेरी गुड, वेरी वेल डन. क्या बात है.
0: मैंने पहले कहा था मैम मुझे गाने का बहुत शौक है.
1: बस आज के बाद ना हम आपसे टंग ट्विस्टर गाने में ही सुना करेंगे.
0: सुना दिया करूंगा. असल में क्या है कि मैंने टंग ट्विस्टर पहले सुना नहीं, अगर तो मैं पक्का करता तो और ही सुर में गाता मैम.
1: चलिए जबरदस्त डेली जो है ना हम आपसे सुर में सुना करेंगे. डन है.
0: डन डन डन.
1: ओके और कुछ कहेंगे.
0: नहीं मैम बस बहुत हंसी आ गई है, बहुत खुश.
1: ओके जी बहुत सारा ख्याल रखें अपना. अल्लाह हाफिज. और देखते हैं कि अब कौन इसको सुर में गा पाता है. 03000113488

0: लीजिए एक और कॉल लेने जा रहे हैं, चेक करेंगे कौन है कहाँ से। हेलो
1: हेलो
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं?
1: वालेकुम असद बात कर रहा
0: हूँ। असद बात कर रहे हैं, असद में मुझे ना आप कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे आपकी एकदम से कॉल आती है ना, मैं कहती हूँ कौन बात कर रही है। ऐसा इत्तेफाक कभी किसी को कॉल करते हुए हुआ है आपको? होता रहता है। चलें जबरदस्त। अच्छा टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे
1: वो भी सुनाए।
0: सुना दे फिर बोल दे।
1: आशान ने कमरे के कोने से काली कंघी निकाल दी।
0: आशान
1: ने कमरे के कोने से काली कंघी निकाल दी। आशान ने कमरे के काली कोने से काली कंघी निकाल दी।
0: नो नो नो, आशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली।
1: आशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली। आशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली। आशा ने कमरे में कोने में काली कंघी निकाली। आशा ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली।
0: और कुछ कहेंगे?
1: बाजी सॉन्ग सुना दे अच्छा सा कोई।
0: कौन सा?
1: जो भी है वो जो पाकिस्तान कौंटर जो वो सुना दे।
0: चले मैं आती हूँ आपको। थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।

0: Okay, one more next caller. Hello.
1: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Kaun baat kar rahe hain, kahan se? Distortion aa raha hai aapki awaaz mein. कहीं ऐसी जगह पे चल जाए जहाँ प्रॉपर सिग्नल हो. सॉरी मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही. आई कांट अंडरस्टैंड. हेलो. ओके जी, तो काइंडली ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे प्रॉपर सिग्नल हो, वहां जाके कॉल करें. जो भी आप भाई हैं कि बहन है, अभी तक मुझे समझ भी नहीं आया था. खैर, नेक्स्ट कॉलर. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. कौन किधर से?
2: हैदरबख की बात कर रहा हूँ.
0: हैदरबख, क्या हाल है भाई?
2: अल्लाह का काम है. आप

0: अच्छी हूँ हमेशा की तरह। और भाई मेरे मुझे ये बताइए, टंग ट्विस्टर सुनाए भाई?
1: जी जी सुना है।
0: तो बोले ना,
1: कसम ने कमरे के किचन।
0: हाँ जी बोले बोले। हैदर हैदर भाई की कॉल ड्रॉप हो गई। भाई हो गए भाई, हैदर भाई। सब बहनों के भाई। अच्छा, इसके अलावा जी मेरे ख्याल से मुझे मूव करना चाहिए एक अदद सॉन्ग की तरफ। एंड मैं कौन सा प्ले करूं इसमें से?

कि जी ये हम कुछ प्ले करना चाह रहे हैं, प्ले कुछ और हो रहा है, बट नो इश्यू, हम प्ले करेंगे एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड हियर कम्स द सॉन्ग बाय हसन एंड रोशन. सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, आगे चलते हैं.

0: It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Hamay Diamond Gloss Bleach Cream, jo deep clean kare aur de char guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hamay Diamond Gloss Bleach Cream.
2: GA Sakhar FM 88.
3: Sakhar ki awaaz.
4: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
6: बैंकल हबीब रिश्ता भरोसे का
7: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
8: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
9: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़न जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763
7: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

तुमाने में किसने टंग ट्विस्टर अच्छा अच्छा बोला है वो हम बताएंगे आपको. उससे पहले कुछ कमेंट्स को इंक्लूड करेंगे. नियाज हुसैन मलक हमें सुन रहे हैं, इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं मीरपुर खास से, अब्दुल रज्जाक हमें सुन रहे हैं मीरपुर खास से और कहते हैं शो जबरदस्त है, आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है. मुझे क्या पता, आप बताएंगे ना मुझे कि जबरदस्त है या नहीं. इसके अलावा हर्ष चंद्र राय कोहली हमें सुन रहे हैं, जिंदगी में हमेशा ऐसे इंसान बने जो किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बने, क्योंकि दिल जीतने का हुनर हर किसी को नसीब नहीं होता. वाओ, वेरी वेल सेड.

0: छा अमा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज खुशखबरी आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
1: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
0: DHMS सिंध
1: RHMP इस्लामाबाद
0: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना
1: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी
0: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज
1: कमर दर्द
0: अर्कुन निसा
1: जोड़ों का दर्द
0: हेपेटाइटिस
1: वजन की कमी या ज्यादती
0: बे औलादी
1: गंजपन का मुकम्मल इलाज
0: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
1: टाइम
0: हफ्ते से जुमेरात
1: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
0: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक
1: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर
0: राब्ते के लिए
1: 0326-22-00-40
2: जड़े माँ पांजो ख्याल रखन दिया है तो सेहत नसलन ताई हलन दिया है ही पेगाम कश फाउंडेशन एंड कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो
3: जीए सखर FM 88
4: सखर की आवाज

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. अच्छा, आज का जो टंग ट्विस्टर जिसने अच्छा अच्छा बोला है, मेरे ख्याल से वो सागर भाई हैं जिन्होंने सुर में टंग ट्विस्टर बोला है. अच्छा, इतना ज्यादा तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन जो बोल दिया है क्या कमाल का बोला है. और आज का टंग ट्विस्टर उन्होंने अच्छा बोला है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा. और अगर बात की जाए कि किसने ज्यादा बोला, तो किसी ने ज्यादा नहीं बोला, जबकि आज का टंग ट्विस्टर बहुत ज्यादा ईजी था. साथ साथ आप लोगों की लाइव कॉल्स भी रिसीव करेंगे, लास्ट लकी कॉलर्स.

0: आगे इस्मान किशोर कमेंट कर रहे हैं, तेरा होकर देख लिया है मैंने, रोकर देख लिया है। इश्क में पागल होने से कुछ नहीं होता, मैंने पागल होकर देख लिया है। वेरी गुड, मतलब अकल आ गई है। ओके, वेरी नाइस। ओके जी, लास्ट लकी कॉलर्स में चेक करते हैं आज किसकी कॉल लगती है। हेलो,
1: हेलो, वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से? जी जी, खैरियत है? कौन बात कर रहे हैं भाई, नाम बताइएगा। गुलाम लगारी से। कौन?
1: गाजी खान रिंद।
0: ओके जी, गाजी खान रिंद भाई, कैसे? ठीक ठाक,
1: अल्लाह का शुक्र है भाजी। आप सुनाओ, खैर कह रहे थे?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बताएं कि लास्ट लकी कॉलर है, आज की अच्छी बात क्या है?
1: अच्छी बात है कि साथ एक्टिंग करो, वालदेन का खिदमत करो, वालदेन का ख्याल करो, और छोटे बच्चों के ख्याल करो, ये अच्छी बात है। और देखिए काम किया करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का इबादत करो, यही अच्छी बात है।
0: ओके ठीक है, थैंक यू सो मच।
1: और फिर कह रहे थे नंबर ही नहीं लगता, बड़ी मुश्किल से लगा
0: कॉल, बड़ी मुश्किल से लगती है। बस क्या रश है ना हमारी शो में, तो इस वजह से सबकी यही शिकायत है कि कॉल नहीं लगती।
1: हाँ, कॉल नहीं लगती।
0: हाँ जी
1: बिल्कुल,
0: चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं प्ले कर रही हूँ एक अदद गाना।

गाना है और गाना ऑलमोस्ट हमारा पूरा खत्म हो चुका है एंड नेक्स्ट एंड लास्ट सॉन्ग की तरफ हम मूव करेंगे एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट सॉन्ग जो कि मैं प्ले करूंगी आप लोगों के लिए और इसको हम सुनेंगे, इंजॉय करेंगे और इसी के साथ प्रोग्राम को रैप अप करेंगे. सो इसका मतलब ये है कि आपसे मेरी चिट चैट होगी अब कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे. सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. लव्स पर थिंक हाई. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइंस आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज़.

0: अब चमकती, नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ्फुज़ दे, कोजिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आपको दे एक खूबसूरत, चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। पिंक डायमंड ग्लो बाय हेमी नेचुरल्स।
1: सफ़ा मारे छजुआ
2: अदात ने जो इलाज छो न थो कराई,
1: इलाज कराए कराए थक जी पियो आ
2: अदा, इन सूर जो इलाज खात्मा दर्द दवा सा मुमकिन आहे। जी हां, खात्मा दर्द एक एड़ी दवा जेका सूर खा दे निजात। सूर चाहे जोड़न जो हुजे, पठन जो हुजे, जेल जो हुजे या घिंटिया जो, कुन रग जो हुजे या वरी जिस्म जे कह भी नंडे वडे सूर जे लाए आजमूदा दवा आहे। सतन दीहन जी दवा सिर्फ 450 रुपयन में। खात्मा दर्द मिलन जो हंध बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामो, अल नूर दवा खाना रोहड़ी। राप्ती जी लाए 0305-58-00-616।
3: It's 1 PM. This time check is brought to you by
4: Michael Habib, Rishta Bharose Ka.
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News।

0: ईरानी अवाम जे अगन के न मञण जो नतीजो नाकामी खां सवाइ कुझु बि न हूंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाद चयो आहे त ईरान एटमी प्रोग्राम ते ठा न कंदो। तेहरान जे ॾिनल 14 तजवीज़नि जो ॿियो को बि मुतबादिल न आहे। तेहरान अमरीकी देर जी क़ीमत टैक्स ॾींदड़ अमरीकी शहरनि खे भरणी पवंदी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि मुल्की एक्सपोर्ट बाबति इजलास। इंडिया विचोले कारोबार सनअतनि खे सहूलियतूं फराहम करण बाबति हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ चयो त एक्सपोर्ट ते वधल सनअत ऐं मुल्की तरक़ी जा हदफ़ हासिलु करणु अंतर आहे। हुकूमत जो समूरो ध्यानु एक्सपोर्ट में वाध ऐं सनअतनि खे सहूलियतूं ॾियण ते आहे। एक्सपोर्ट में वाध जो कारण बणजंदड़ नवनि कारोबारनि ऐं सनअतनि खे हथी ॾियण लाइ रिथाबंदी कई वञे।
1: फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पूरी कौम सब एक पेज पर, कोई आपस में कोई डिफरेंस नहीं। ये उफाओं की हद तक सोशल मीडिया की हद तक जो है ये खबरें आ रही होती हैं। आप देखिए कि मुल्क के जो सबसे बड़े आईनी अहदे पे बैठे हुए हैं हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी सेहत के बारे में झूठी खबरें कभी, और ये सारी चीज़ें प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक वफाक की हुकूमत ने कोई मसूदा शेयर नहीं किया, आनी नहीं आनी ये पता नहीं है। आप उसमें सिंध की तकसीम भी लेकर आ गए, सिंध की तकसीम किसी भी सूरत में नहीं होगी, कुछ भी हो जाए, 28वीं आए या 28वां 2800 तंदी में आ जाए, सिंध की तकसीम किसी भी सूरत में नामुमकिन है, ना कोई कर सकता है, ना हम होने देंगे।
0: वफाक ऐं सिंध हुकूमत विच में इख़्तिलाफ़नि वारियूं ॻाल्हियूं बेबुनियाद आहिनि। वफाकी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत हिकु पेज ते आहिनि। 28 तरमीम अचे या 29, सिंध खे केर बि ऐं कॾहिं बि विरिहाए नथो सघे। खैरपुर में पीपल्स मसलर जे इफ़्ताह वारे तकीब ख़िताब ऐं मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जी लीना मेमण चयो त GDA खे फाल करणु सुठी ॻाल्हि आहे। सिंध में पीपल्स पार्टी जो केर बि मुक़ाबिलो नथो करे सघे। सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सभिनी खां वधीक आहे, सुठो कमु करे रही आहे। सुठे कम बावजूद पीपल्स पार्टीअ ते तनक़ीद पई वञे, सोशल मीडिया ते मुहिम हलाई पई वञे। सर्जी लीना मेमण खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस जो इफ़्तिताह कयो।

की मिलवत असराय नोरंग में धमाको, 7 जणा शहीद, 17 का वधीक जख्मी। शहीदन में ब पुलिस एहलकार भी शामिल। अस्पताल इंतजामिया मूजिब धमाके बाद 17 लाश अस्पताल आंदा व्या। पुलिस मूजिब धमाके में ट्रैफिक पुलिस जा ब एहलकार भी शहीद थिया। वधीक जांच जारी है। बहादुर सत के साने के 19 साल मुकम्मल। शहर में रत की होली खेड़ कानून के कटड़े में न आया। सिंध में वकीलन पारा अदालती कार्रवाई जो बायकॉट। मुख्तलिफ शहर में मुजाहरा। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़कानो, नवाबशाह में वकीलन पारा अदालती कार्रवाई जो बायकॉट कर। कराची की दहशतगर्द जोड़ अदालत में 12 मई बहादुर सत साने के 6 केसन की बुधनी। कराची जो अगड़ो मेयर वसीम अख्तर बिहार नामजद जवाबदार पेश। जेल कम्पलेक्स में थियल बुधनी दौरान बिन केसन में जांच ऑफिसर जो बयान कलम बंद। एयरपोर्ट थाने जो बहजाज जांच जो ऑफिसर नजर मोहम्मद मंगरियो केस प्रॉपर्टी पेश करने में नाकाम। अदालत पारा सख्त कावड़ जो इजहार। अदालत जांच ऑफिसर के इंदड़ बुधनी केस प्रॉपर्टी पेश करने जो हुक्म दई छो। कराची शहर के मुख्य इलाकन में 3 जणा कतल, 1 जख्मी। गुलशन ममार भरसा साहिब खान पुट मुसाफिर के कतल किया वो। बल्दिया वे इलाके में नादन बायपास से LPG गैस कंपनी के वेझो फायरिंग। नौजवान गुलाबपुर यूसुफ कतल। न्यू सब्जी मंडी वेझो हिंगोरा गोट वट फायरिंग में सईदुल्ला कतल, 1 जख्मी थोड़ा।

गुलाम शाह मेहरली बगे वाली की बारड़ो फौत केतरा ही मर्ज में वरतल गोट ड्रिप डावरी में चैन साहब जो बारड़ो शाहजेब डावी उर्ली बगे फौत थो फोतिय बाड़े जो नंढो भाव मैसूर बउली सबब गणती जो हालत में अस्पताल दाखिल इलाके में बया बार बउली में वरतल।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजब दंदड़ा समी समात के मुझे तरफा अस्सलामु अलैकुम। दो के समंदर साहतों की बारिश और आसवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नहीं से ताकि कमी से आसमान तक, जिंदगी से मौत तक, चांद से तारों तक, से खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन, जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे, तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोर और

असां सां गॾु मौजूदु आहिनि तव्हांजा फीडबैक्स, तव्हांजो ॻाल्हियूं, तव्हांजो कचहरियूं जेके तव्हां मूंसां कंदा आहियो. मां सोचां पई त पैनल तां असां स्टार्टिंग कयूं या कॉमेंट जी तरफ़ अचूं.

ओके सो पेनल थे अचूं था पेनल थे तमाम कुछ मैसेजेस आए. अच्छा ये आशिक अली मलाह हमारे साथ है गोठ अर्ज मोहम्मद लगारी से. हाय डेडिकेट नसीर माशी को करते हैं आप गाना बहुत शुक्रिया जी आपको वेलकम करते हैं. दूर से दुनिया भाई हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम बदीन अदी सिद्रा गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस टेक केयर अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे आमीन जी सुम आमीन. और ये हमारे साथ मौजूद है आशिक अली मलाह भाई आपने दोबारा से वही मैसेज सेंड कर दिया है सो बहुत शुक्रिया. और चाचा खालिद कहते हैं बेटा गाने की रिक्वेस्ट है ओके जी आई विल ट्राई. और ये गोठ मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू है कहते तमाम जो शो विनी नाइस आ है मोहब्बतों प्यारे भाजू. ओके जी मायरा भी असने प्रोग्राम बुधे पई मारा तमाम जो भी मोहब्बतों प्रोग्राम बुधो पया इन खां अलावा जेको आ फेसबुक वारा मानू तमाम पोस्ट के लाइक एंड शेयर कंदा हलो सही आहे जेतिरो तमाम शेयरिंग कंदा ओतिरो मज़ो ईंदो आहे सो शेयरिंग तमामु घणी कंदा कयो.

भई इहा हक़ीक़त आहे त जेके माण्हू तव्हांखे प्यारा हूंदा आहिनि उन्हनि माण्हुनि जो तव्हां सदा ई खेर घुरंदा आहियो ऐं उन्हनि माण्हुनि जे स्किन जो बि खेर घुरो बाबा पंहिंजे पेरेंट्स सोणनि खे जेको आहे न वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जेको आहे न तोहफ़ो कयो या फिर उन्हनि खे तव्हां मशवरो ॾियो त हाणे मार्केट में वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अची विया ऐं तव्हांखे वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु करिणो आहे ऐं वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांखे चङी तरीक़े सां ख़बर आहे तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो जेके प्रोडक्ट्स तव्हांजी स्किन जे मुताबिक़ तयारु थियल आहिनि ऐं जंहिंमें तव्हांजे लाइ सभ खां बहितरीन अगरि ॾिठो वञे त प्रोडक्ट आहे वाइट एश जी लवली क्रीम ऐं वाइट एश जी लवली क्रीम हिकिड़ो अहिड़ो प्रोडक्ट आहे जेको हिन में एज लिमिट बिल्कुल बि न आहे तव्हां हर उमिरि में हिनखे लॻाए सघो था तव्हांजी स्किन खे ख़ूबसूरत बणाईंदी तव्हांजी स्किन खे निखारींदी तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त बि कंदी त हिन में सनस्क्रीन बि एड थियल आहे सो बाबा एॾो ज़बरदस्त प्रोडक्ट अगरि मार्केट में अवेलेबल आहे त तव्हां वठो चून पिया

Iya hujan ya. सनावला बिरोई हमारे साथ मौजूद है। हेलो वालेकुम अस्सलाम। चाचा खालिद आपने हमारी पोस्ट को शेयर कर दिया जी, बहुत शुक्रिया। वजाद अली मलगानी हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। स्मार्ट किशोर भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। वैसे अभी आपकी गुड मॉर्निंग हुई, क्या बात है, और वेलकम करते हैं आपको भी। और ये अली मोहम्मद कुंदर भाई हमारे साथ, गुड आफ्टरनून। मोहम्मद ताहिर लुंड बलोच हमारे साथ मौजूद है, वेलकम भाई को करते हैं। आशिक अली जलपानी हमारे साथ हैं, आशिक भाई आपको भी वेलकम हो गया। एक एक कलहोड़ो हमारे साथ हैं, कहते हैं आप ही फर्स्ट टाइम में आपका शो सुन रहा हूं। अच्छा नहीं, आयशा हमारे साथ मौजूद है, आयशा हेयर हमारे साथ हैं, और आप पहली मरतबा हमारा शो सुन रही हैं, वालेकुम अस्सलाम। आयशा को वेलकम करते हैं, और आयशा आपको भी मशवरा देंगे कि आप भी जनाब वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब कीजिएगा अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन जो है वो हमेशा खूबसूरत रहे। तो अगर आप ये नहीं चाहते तो फिर आप सोचिएगा जरा। वैसे हर किसी का ये ख्वाब होता है कि उनकी स्किन जो है ना वो खूबसूरत रहे, तो आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिएगा। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि अगर वो पूछ ले हमसे तो मैं किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। ओ बाबा, चाचा खालिद कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम शो एंड व्हाइट एज लवली क्रीम शो लाइक, क्या बात है, यानी कि आपको बड़ा पसंद आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। किशोर भाई कहते हैं कि मुंह कड़े यूनी जो मुंह भी कौन डिठो आ, पर सब मुखा पुछन आए ने डियो खबर अजकल अच्छा पया पड़ो। माशाल्लाह माशाल्लाह, स्कूल है तो डिठो दवे ना भला, इतरो काफी आ। अच्छा शहबाज भाई हमारे साथ हैं, वेलकम हो गया। प्रेमचंद भाई हमें सुन रहे हैं, प्रेमचंद भाई आपका भी वेलकम। दर्दे दिल आ चुके हैं, दर्दे दिल वालेकुम अस्सलाम स्वीटी। और हैं जी, और कौन है, अच्छा हाँ फायजा अली जी गाना बिल्कुल ताकि बुधराइना जी, फायजा अली जी रिक्वेस्ट भी काफी सारी जमा थी भैया है, सो फायजा जो बिल्कुल गाना बुधना सी। कश्यप असगर मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कश्यप। अच्छा कहती है कि आज मुझे लग रहा है कि आप नहीं आई हैं। अब पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन मैं तो आई हूँ, और आपको कश्यप वेलकम करते हैं।

ओके जी, सो अॼु तव्हांजो कॉल्स त बिल्कुलु वठंदासीं, पर मां इहो सोचां पई त तव्हां जेकी कॉलर्स मूंसां कॉल ते कनेक्ट थींदा, कॉल कंदा, या फिर तव्हां जेके बि माण्हू मूंखे मैसेज कयो था या फिर कॉमेंट कयो था, तव्हां सभु मूंखे इहो ॿुधायो त हेतिरा ॾींहं थी विया आहिनि खेड़ सां प्रोग्राम कंदे, मतिलबु इलाही ॾींहं थी विया आहिनि, सो तव्हां मूंखे अॼु इहो ॿुधाईंदा त तव्हां छा हिन महिल ताईं को प्रोडक्ट वरितो आहे या सिर्फ़ु अञा ताईं प्रोग्राम ॿुधो पियो? अच्छा, त कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि जेकी न मतिलबु जेका शइ ॿुधंदा आहिनि त उहो मिंट में वेठी ईंदा आहिनि, कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेकी वरी इंतज़ारु कंदा आहिनि, थोरो इंतज़ारु न बल्कि इलाही सारो इंतज़ारु कंदा आहिनि। सो तव्हां अॼु मूंखे इहो ॿुधाईंदा त तव्हां अञा ताईं जेको आहे प्रोडक्ट वरिता आहिनि या फिर सिर्फ़ु तव्हां सोचो था त मूंखे वठणु घुरिजनि, तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट वठणु चाहियो था, इहो बि तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा। अच्छा, आदिल हुसैन आप हमारे साथ मौजूद है, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया जी। और अदनान नूर हमारे साथ मौजूद है, वेलकम जी आपको भी, और जतिन बिश्त हमारे साथ है, वेलकम।

से ये जो इतना प्यारा गाना मैंने लगाया, तो ये गाना किसको डेडिकेट जाता है, तो जरा उसकी जाने भी आता है। ये प्यारा सा गाना हमें डेडिकेट किया है जी हमारी प्यारी लुभी ने, और हमारी प्यारी लुभी हमारे साथ मौजूद है। लुभी क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, जाने क्या हाल है? मैं भी आपके साथ साथ हूँ। अर्जी भुट्टो से आप हमारा शो सुन रही हैं, वेलकम। और कहती है कि मेरी प्यारी दोस्त, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुश नसीबी है। तुम्हारे साथ गुजारे लम्हात मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं लगा कैसे एक घंटा गुजर गया। तुम तो इतनी प्यारी हो कि तुम्हें घंटों बैठ कर देखा जा सकता है। पता है लोग कहते हैं कि खूबसूरती और वफादारी एक इंसान में नहीं होती, मगर मैंने तुम में दोनों देखे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जिस लड़की से मैंने दोस्ती की, खूबसूरत होने के साथ साथ वफादार भी है। लोग कहते हैं कि दोस्त बर्बाद हमेशा कर देते हैं, मेरे साथ रहना मेरी पसंदीदा दोस्त बनकर। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही साथ रखे, आमीन आमीन सुमा आमीन। वैसे इतना इमोशनल कर दिया आपने ये प्यारा सा मैसेज लेकर, थैंक यू सो मच। वैसे ये ऐसा होता है ना कि हम अगर किसी इंसान में कुछ भी तलाश करते हैं, चाहे वो वफादारी हो, खूबसूरती हो या मोहब्बत हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहली बात ये होती है कि वो अगला इंसान जो होते हैं ना, उसके अंदर वो चीजें मौजूद होती हैं। अगर आप वफादार हैं, खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, मुखलिस हैं, साफ दिल के इंसान हैं, तो आपको सारे लोग वैसे ही लगते हैं। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर भी आती हैं। तो मेरी प्यारी लुभी आपको वेलकम करती हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, बहुत बढ़िया जी, इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती को बढ़ाते रहिए। और बाकी असंद लगाई ना इतनी तो खूबसूरत आयो।

जी वारी आ तवां भी लगायो हल वेलकम जी यहां पर चाहता है कि हम न्यूज़ ब्रेक ही जाने जाएंगे ब्रेक होने वाली है वो के पास आएंगे बस आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहिएगा सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट इश एंड स्किन ब्यूटी शो

0: FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 2 PM. This time check is brought to you by.
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
4: पाकिस्तान ईरानी जहाज़नि जी मौजूदगी बाबति CBC न्यूज़ जी रिपोर्ट खे गुमराह करण क़रार ॾेई रद्द करे छॾियो। परॾेही खाते मूजिबि इस्लामाबाद घरनि लाइ अमरीका ऐं ईरान जा केतिरा ई जहाज़ पाकिस्तान पहुता, जंहिंजो मक़सदु सफ़ारती अमले ऐं सिक्योरिटी टीमनि ॻाल्हियुनि वारे अमल खे आसान बणाइण हो। कुझु जहाज़ ऐं अमलो ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर खे नज़र में रखंदे पाकिस्तान में मौजूदु रहिया। ॿियो दौरु अञा बाज़ाबता शुरू नाहे थियो, पर आला सतह सफ़ारती राबता जारी आहिनि। ईरानी परॾेही वज़ीर जो पाकिस्तानी जो दौरो बि मौजूदु आहे। इंतिज़ामी ऐं लॉजिस्टिक सहूलतुनि ज़रिए मुमकिन थियो हो। पाकिस्तान में मौजूदु ईरानी जहाज़ बि जंगबंदी दौरान आयो हो, जंहिंजो कंहिं बि क़िस्म जी फ़ौजी हंगामी सूरतहाल या हिफ़ाज़ती क़दमनि सां तालुक़ु नाहे। ख़्यालनि ते ॿधल बयानीअ जो मक़सदु इलाक़ई इस्तिहकाम ऐं अमन वारनि कोशिशुनि खे नुक़सान पहुचाइणु आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी क़यादत खे बेमान ऐं बार बार मौक़िफ़ तब्दील करणु क़रार ॾेई छॾियो। तेहरान ते रचियल यूरेनियम कढण जी इजाज़त ॾियण वारे मुआहिदे तां बि पोइ ते अटण जो इल्ज़ाम लॻाए छॾियो। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान अमरीका जंगबंदी वेंटीलेटर ते आहे। तेहरान ॻाल्हियुनि ते इतफ़ाक़ करण बाद फ्री वञे थो, कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदासीं। तेहरान सां अञा बि मुआहिदे जा इम्कान मौजूदु आहिनि। ईरानी عوام जे हक़नि खे न वञण जो नतीजो नाकामी खां सवाइ कुझु बि न हूंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाग चयो आहे त ईरान एटमी प्रोग्राम ते ठाह न कंदो। तेहरान जे ॾिनल 14 तजवीज़नि जो ॿियो को बि मतवाज़न नाहे। ईरान जे पार्लियामेंटी कमीशन तर्जमान इब्राहिम रज़ाई चयो त ॿीहर हमिलो थियो त तेहरान यूरेनियम जो रचाउ 90% ताईं वधाए छॾींदो। मामले जो पार्लियामेंट जो बि जाइज़ो वरितो वेंदो ऐं क़ौमी मफ़ादनि जो मूजिबि फ़ैसिलो कयो वेंदो। ईरान ख़िलाफ़ अमरीकी ऐं इसराइली जंग में UAE पे शामिल हो। अमरीकी मैगज़ीन वॉल स्ट्रीट जनरल जी छिकाईंदड़ रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जनरल मूजिबि जंग दौरान गॾियल अरब इमारतनि ईरान जे लावान बेट ते आयल रिफाइनरी खे निशानो बणायो, जंहिं सबबु रिफाइनरी खे बंदि बि कयो वियो। हमिलो अप्रैल में अहिड़े वक़्तु कयो वियो जंहिं वक़्तु अमरीकी सदर ईरान सां जंगबंदी जो ऐलान करण वारो हो। जंग में शमूलियत ते UAE जी शमूलियत जी अमरीका ख़ामोशीअ सां आजियां कई। जवाब में ईरान पे UAE ऐं कुवैत ते हमला कया। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सदारत हेठि मुल्की एक्सपोर्ट बाबति इजलास। वज़ीर आज़म ने नंढे विचोले कारोबार सनअतनि खे सहूलतूं फराहम करण बाबति हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ चयो त एक्सपोर्ट ते ॿधल सनअत ऐं मुल्की तरक़ी जा हदफ़ हासिलु करणु अंतर आहे। हुकूमत जो समूरो ध्यानु एक्सपोर्ट में वाधि ऐं सनअतनि खे सहूलतूं ॾियण ते आहे। एक्सपोर्ट में वाधि जो कारण बणजंदड़ नवनि कारोबारनि ऐं सनअतनि खे हथी ॾियण लाइ रिथाबंदी कई वञे।
5: गवर्नमेंट काउंसिल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट फुल फॉर्म सब एक पेज पर है।

0: आपस में कोई डिफरेंसेस नहीं हुई है। ये उफान गैप तक, सोशल मीडिया गैप तक जो है ये खबरें आ रही होती हैं। आप देखें कि मुल्क के जो सबसे बड़े आईनी अहदे पे बैठे हुए हैं हेड ऑफ द स्टेट पाकिस्तान, उनकी सेहत के बारे में झूठी खबरें कभी, और ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक मकामी हुकूमत ने कोई मसूदा शेयर नहीं किया, आनी नहीं आनी ये पता नहीं है। आप उस मिशन की तकसीम भी लेकर आ गए, सरसन की तकसीम किसी भी सूरत में नहीं होगी, कुछ भी हो जाए, 28वीं आए या 28वां 2800 कंधे में आ जाए, सिम की तकसीम किसी भी सूरत में नामुमकिन है, ना कोई कर सकता है, ना हम होने देंगे।
1: वफाक ए सिंध हुकूमत विच में खिलाफन वारियों गालियों बेबुनियाद हैं। वफाकी हुकूमत ए सिंध हुकूमत एक पेज ते हैं, 28 तरमीम अचे या 29 सिंध के केर भी कदें भी विराय नथो सके। खैरपुर में पीपुल्स बस इफ्ताह वारी तकरीब के खिताब कंदे ए मीडिया से गलदे सीनियर सूबाई वजीर शर्जीना मेमुण जीडीए के फाल करण सुठी गाल है, सिंध में पीपुल्स पार्टी जो केर भी मुकाबलो नथो कर सके। सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सभी का वधीक ए सुठो कम कर रही है, सुठे कम बावजूद पीपुल्स पार्टी से तनकीद के पे वे, सोशल मीडिया से मुहिम हलई पे वे। शर्जीना मेमुण खैरपुर में पीपुल्स बस सर्विस जो इफ्तिताब कयो।
2: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़। जिस धरती

0: छा अहा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीए हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: This program is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्त राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी अध मथे जो सूर अखिन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सभिनी बीमारियुनि जो मुकम्मल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबुह 9 वगे खां शाम 5 वगे ताईं बरोज जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-9984-7063।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

जी अब्दुल सत्तार भयो चवे। शामराद मिदरी खास फरमाश ऐं दिलमुराद मिदरी खास फरमाश ऐं मुदसर मिदरी शहर सिबिका।

आप सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास। आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड द स्किन ब्यूटी शो। इस प्रोग्राम में आप लोगों को खूबसूरती की बातें बताई जाती है और साथ साथ आप लोगों से जाना जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ना जिनके एरिया में अवेलेबल नहीं हुए अभी तक, या फिर आप अवेलेबल कराना चाहते हैं या फिर आप अवेलेबल नहीं कराना चाहते, तो बहुत सी बातें ऐसी होती है जो कि हम जानना चाहते हैं। तो वेल आज हम जो है ना आप लोगों की कॉल्स पे करेंगे या फिर अगर आप हमें मैसेज कर रहे हैं कमेंट कर रहे हैं तो आप मुझे जरा ये बताइए कि कहां कहां पर अभी तक अवेलेबल हैं, आप लोगों ने मालूमात ली या नहीं। मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को ये असाइनमेंट दिया था कि भाई आप जरा मालूम करके मुझे ना बताइएगा कि कहां कहां पर अवेलेबल हैं, चाहे वो व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट्स हो। जरा मुझे पता हो कि भाई कहां कहां पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हुए हैं या फिर अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं, तो वो आप जरा ना मेरी थोड़ी सी मदद कर दें ताकि मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि कहां कहां पर मिल रहे और कहां कहां पर अभी तक नहीं मिल रहे। तो मैं आप लोगों से सबसे पूछूंगी कि भाई आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, अगर मिल रहे हैं तो आप परचेज कर चुके हैं या फिर नहीं और कराना चाहते हैं। आपके पास नंबर है जनाब 03-15595। ये नंबर आप डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर आसानी परचेज करते जाइए। अभी हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों की कॉल्स की जानेब आएंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी बताते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है जनाब ये विटामिन ई बीट से तैयारशुदा है माइक्रो बीट फॉर्मुलेशन के साथ साथ, और जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके जल्द की खूबसूरती को बढ़ाती है और आपके जल्द की हिफाजत करती है। और जनाब इन तमाम चीजों को देखते ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार की गई है, एक मयारी ब्यूटी क्रीम है। ये जल्द को नमी फराहम करती है और चेहरे को नरम मुलायम और तरोताजा रखती है। और जनाब अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जल्द भिरोन की जो है ना आपके जल्द पर वो खत्म हो जाती है और आपका चेहरा ज्यादा साफ रोशन और दिलकश दिखाई देता है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 2 रातें अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट्स मिल जाते हैं और आपकी खूबसूरती में इजाफा आ जाता है। तो रोजाना इस्तेमाल से आपकी जल्द को कुदरती निखार और खूबसूरती मिल जाएगी जनाब। तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें, 2 रातें लगातार इस्तेमाल करें, उसके बाद आप लगाते जाएंगे आपको खूबसूरती मिलती जाएगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको जो है ना वो डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। फेस वॉश तो भाई बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, तो आप ये फेस वॉश ट्राई करके देखिएगा। डी स्किन का जो फेस वॉश है ना वो जनाब सीरम के साथ साथ तैयारशुदा है, इतना जबरदस्त है कि आप लगाएंगे तो कहेंगे भाई वाह क्या बात है मजे आ गए। तो आप जरूर ट्राई करके देखिएगा और उसके साथ साथ आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे ये भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए।

0: बाकी रही बात आपके कॉल्स की, तो आगे कॉल्स की जानिब हम आते हैं और अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। तो कॉलिंग नंबर हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 0333221322 and 88। सारे लोग अब कॉल्स की जानिब आ गए। अच्छा फेसबुक वाले जितने लोग हमारे साथ हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। ओके जी, तो हम जरा ये वाली कॉल पे करते हैं, ये फर्स्ट प्रोग्राम की कॉल होने वाली, देखते कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
0: अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, खैर ताम बताया कि रिश्ते से अगर मौजूद आए हो
1: आपको कभी बाहर जाने का।
0: आसिफ भाई साला खुश आयो। कहिड़ी भली थी लॻे, माना तव्हां ॻाल्हियूं त ॿुधियूं आहिनि ॿिन्ही जूं, हाणे तव्हां ॿुधायो त तव्हांखे कहिड़ी तरफ़ वञिणो आहे।
1: कहिड़ी
0: अच्छा, चलो डी स्किन वारी तव्हां लॻाइजो। चलो ॿई लॻायो, मिक्स करे फार्मूलो ठही वेंदो। जी जी, टॉपिक इहो आहे त तव्हां मूंखे, मां तव्हांखे कुझु ॾींहं पहिरियां इहो चयो त किथे किथे अवेलेबल आहे, तव्हां पुछा कराइजो। सो तव्हां पुछा कराई त किथे तव्हां

0: 2221322 एंड 88 नेक्स्ट कॉल देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: आई केरे से सगड़ा सोनी छोकरी दुआ दुआ जो दुआ लगी वही असांगे साईं. अच्छा दुआ तवां के तां जी दुआ लगन दिया कोन थी लगी ना पांजी न लगन दिया पांजी न लगन दिया तां मुझला कंदा के मतांज ल कंदम सही आ
1: हां मैं के लगन दिया खास कर हो करे
0: ये या बिल्कुल ये या मुखे बताए दुआ प्रोग्राम दो प्या.
1: हां बिल्कुल.
0: अच्छा तां मालूमात कराई त वाइट एच जा
1: पर कर हां से के कराई से के करी तो रोया.
0: हां कोन
1: में अंदर पाकार में
0: मार्केट में रेशम कली में मिली वेंदी आराम से. चलो चक्कर लगाया ना रेशम कली जो शॉपिंग करी आई दवे जी तव खबर अथव. शॉपिंग क्यों था वठी है जो जरूर वाइट एज या डी स्किन नन बिनी मा का बणी
1: हां चक्कर लगा ना ने चलो
0: चलो सही आ बे ओके ने दोस्तन की याद करनी दुआ दुश्मनन के सलाम तव दुश्मनो बुदो ना. चलो दुश्मनन के सलाम पहुंची गया दुश्मनन के सलाम पर छोड़ी दिया. चलो ये भली गाला दुश्मनन के साड़ियों साड़ी दड़न के साड़ी अच्छा चमर चाड़ी नाजी. चलो दुआ थैंक यू सो मच ना प्रोग्राम में कॉल के लाइव थैंक यू अल्लाह हाफिज़. ओके दुआ मालूमात कराई पर दुआ की कौन मिला प्रोडक्ट दुआ जैसे रेशम गली में मालूम कराए ना रेशम गली में बिल्कुल तक मिली वा तेजे करीब जनरल स्टोर तुम मालूम कराया अगर तुम्हें रेशम गली वेझी है लाड़काने वन मानन के तो रेशम गली में वही अचन अगर तुम बे सिटी में असा बुध पाया कें बे शहर में बुध पाया गोठ में बुध पाया तो तुम्हारे एरिया में मिले तो कौन बुधायो तो खबर तो पवी. ओके सो नाउ सो कॉलिंग नंबर 0333221322 नेक्स्ट कॉल दिसो था नेक्स्ट कॉलर के जैसे सगर मौजूद है. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम बाजी मोहम्मद अजीम बात कर रहा हूँ देखती
0: है. ओके अजीम भाई कैसे ठीक ठाक.
2: अल्हम्दुलिल्लाह बाजी दुआएं आप सुनाएं ठीक हो तो भी सही है.
0: अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम सुन रहे हैं अजीम भाई.
2: जी जी बाजी सुन रहे हैं डी स्किन.
0: ओके मुझे बताएं प्रोडक्ट के बारे में मालूमात ली आपने अपने करीबी जनरल स्टोर से पूछा मिल रहे हैं नहीं मिल रहे
2: पूछा है बाजी अभी तक आए नहीं है बोलते दो चार दिनों में आ जाएंगे.
0: चलिए ये चीज जबरदस्त है और बताएं क्या कहना चाहेंगे.
2: बस बाजी आपकी टीम को सलाम और सुनने वालों को सलाम.
0: वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच अजीम भाई आपने कॉल करी.
2: गुलाम कादिर
0: जी जी
2: बाजी गुलाम कादिर को सलाम मंशार खान को सलाम
0: जी जी
2: अब्दुल अजीज राजेड़ी को सलाम.
0: ओके थैंक यू सो मच अजीम भाई आपने कॉल करी बहुत अच्छा लगा और आपके एरिया में भी जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे बस आप नंबर के ऊपर रابطे ना वो बहाल रखिएगा और डायल करते रहिए 0333221322 नेक्स्ट कॉलर देखते कौन हमारे साथ मौजूद है. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम बाजी अभी सोफाई चला है जो बहुत डेंजर फरवरी का.
0: अजीम भाई खुश आयो
3: गाओ गाओ खुश आयो जोर जो खैर
0: सफा मजे में प्रोग्राम बुधो पिया.
3: जी जी प्रोग्राम बुधूंगा तमाम सुखो भी आप ही कह बेयो
0: ये नहीं दिल जाए क्या.
3: जी जी हाँ प्रोग्राम पर आसा जे डेंगा जे शहर में अजा जो को आई क्रीम ये तो अजा कौन आयो है
0: केड़े शहर में. अच्छा चलो शहर में जरूर अवेलेबल कराइंदासीं पर जेको मां तव्हांखे नंबर ॿुधायां थी प्रोग्राम उन नंबर ते तव्हां हिकु दफ़ो कॉल करे वठिजो. चलो ठीकु आहे कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदा. ओके ओके ओके थैंक यू सो मच तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई प्यारा भाउ मोहबतूं तव्हांजो. ओके जनाब कॉलिंग नंबर 0333221322 नेक्स्ट कॉलर इज सुपर से सगर मौजूद है. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम
0: सलाम केरे से सगर दा नालो नालो बिस्मा सही मां थोड़ी बोरी भी आया. अच्छा बिस्मा तां पेरो टाइम जो का कॉल किया. हेलो बिस्मा आवाज तां जो भी न पे अचे हाँ सफा सही तो अचे बिस्मा तवा ठीक आयो.
1: जी जी
0: असल ठीक आहियूं,

ठीक प्रोग्राम ॿुधो पिया बिस्मा थैंक यू मूंखे ॿुधायो तव्हां पुछा कराई त वाई टी जा प्रोडक्ट या डी स्किन जा प्रोडक्ट मिलंदा तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर था या रेशम गली मां तूं बि वञी वठी ईंदी किथां पुछा कराया रहमतपुर मां चलो ठीकु आहे रेशम गली वञो न हाणे ॾेई शॉपिंग करण त वठी अचिजो चले कहिड़े जी जी यादि कयो जी थैंक यू सो मच बिस्मा असांजे प्रोग्राम में कॉल कई माशाल्लाह सुहिणी छोकिरी हुई रहमतपुर खां असांजो प्रोग्राम ॿुधनि पिया वाह वाह वाह वाह गानो हिकिड़ो मौजूदु आहे गाननि जूं फरमाइशूं कुझु थी वियूं आहिनि मां सोचां पई त गाना बि साथ साथ लॻाईंदा अचूं जीअं तव्हांजा गाना बि गॾु गॾु हलंदा अचनि ऐं साईं वॾे खे चवां त हीउ वारो गानो ॾाढो भलो गानो आहे

प्रोग्राम सुन रहे हैं आप व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो बिल्कुल आप इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियां हासिल करते रहिए और साथ साथ आपके मैसेजेस हैं. तो जी ये हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम टीचर, क्या हाल है आपके और आपकी टीम के, आपकी तबीयत कैसी है? जी मैं ठीक हूँ. आप हमारे साथ लारकाना से इमरान अली बिरोही. इमरान भाई आपको वेलकम हो गया. ये मीरपुर खास से मेरे साथ अब्दुल्ला महर के थे. अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम यूज कर रहा हूँ. वाह वाह वाह वाह, यूज क्यों अल्लाह रखियो मेमर. और हजार खान कोरकानी हमारे साथ इमराम लारकाना. अस्सलाम वालेकुम आरजे सिद्रा मुस्कान जी, ये शायरी दिल से पढ़िएगा. हाजिर हाजिर, दिल से पढ़ू था छा था जो शायरी में हिकड़ो मिनट रुको. ओके जी लिखते हैं कि ये दिल के रिश्ते बेवफा हो नहीं सकते. आप भले हमें भुला कर सो जाएं, हम आपको याद किए बगैर सो नहीं सकते. मंजूर सकी रानी का सॉन्ग लगाइएगा. थैंक्स. ओके मैं कोशिश करूंगी आपका गाना सुनेंगे. बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं. और कश्यप कहती हैं आप ही मुझे आज निगत का गाना तो सुनाइएगा. आज मेरी कॉल लगेगी या नहीं? नंबर तो बहुत ट्राई करती हूँ पर जब मेरी कॉल करें आप पिक न बाबा, यो मुझे बस समझे तमाशे छोकरी निकाली उठा पर जल्दी लगी हुई बस नसीब मुझे गाला. और कहती हैं आप इसे डो जी जी लगी तो तमाम भी मुंह आगे निगत नाज जा फेन आयो. सो बिल्कुल निगत नाज की हलाइंदा सी ही वारो गानो ता बुधो गाने से गुरु गुड़ असा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक भी वटू था वो वरी जल्दी मोटी बजंदा ता नींदा सी तमा सफाई ते बैठा हो जो कारी भी न वंजो ओ ही वनी ओ ही मोटा थी. सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड दी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट.

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Henne Diamond Glow Bleach Cream. ब्लीच क्रीम जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी, हमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: हाँ हैरत अंगेज ए जदीद मशीन जरिए पांजो मुकम्मल चेकअप करायो ए होम्योपैथिक इलाज सा कुदरती शिफा हासिल करियो। सेहत ए तंदुरुस्ती जी नई राह ते गामजन थियो त पोए देर छो। अवां जे पांजे शहर सकरण में मशहूर व मारू खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो ए जिगर गुर्दे पित्ते जी पथरी ए सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ है अधमथे जो सूर अखिन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उनन सबनी बीमार इलाज कयो विंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो के खान जुमु मोक एड्रेस सकरण होम्योपैथिक पानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण वधिक मशोरे ए राबते जे लाए 0327 99 84 763।

0: लॻायो।
1: नेचर्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम आई हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे एक नो ग्लो एक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचर्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम।
2: खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
1: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
2: DHMS सिंध
1: RHMP इस्लामाबाद
2: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना
1: माहिर अमराज गुर्दे और मसान
2: बवासीर का बगैर ऑपरेशन
1: जोड़ों का दर्द
2: हेपेटाइटिस
1: वजन की कमी
2: बेअंजपन
1: का मुकम्मल इलाज
2: और बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
1: टाइम
2: हफ्ते से जुमेरात
1: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
2: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक
1: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर
2: रابطے के लिए
1: 0326

0: GAFM 88 Network, Sindh ki Awaaz. This program is brought to you by
1: Jadeh Maa Panjo Khyal Rakhan Diya Hai Ta Sehat Naslan Tahi Halan Diya Hai He Pegam Kash Foundation and Canadian Government Je Tarfaan Pesh Kaya Vaya
2: ओके सर आप सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क हमारे साथ मौजूद है जनाब यहां पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एनडी स्किन ब्यूटी शो बिल्कुल से प्रोग्राम व्हाइट एज एनडी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है ये प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं प्रोग्राम में बातें होती हैं प्रोग्राम में फन होता है प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है व्हाइट एज एनडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बिल्कुल से यहाँ पर आप लोगों ने जो अगर इस्तेमाल करने हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स चाहे वो कोई सा भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें जैसे कि अगर आप ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी व्हाइट एज में ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है सोप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आपको सोप मिल रहा है फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको फेस वॉश मिल रहा है अगर आप लवली क्रीम लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगी ऐसे ही बहुत सारे व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स हैं लेकिन जब हम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जाने बातें हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है बिल्कुल जनाब ये दो प्रोडक्ट्स और ये दोनों प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक तैयार शुदा है ये जनाब इतने कमाल के प्रोडक्ट्स हैं ना जैसे कि आप इस्तेमाल करेंगे जब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम

0: से. लेकिन जब हम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जाने बातें, तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है. बिल्कुल जनाब, ये दो प्रोडक्ट्स है और ये दोनों प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक तैयार शुदा है. ये जनाब इतने कमाल के प्रोडक्ट्स है ना, जैसे कि आप इस्तेमाल करेंगे जब डी स्किन, पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम.
1: ओके
0: जमालदीन बाद साला खुश आयो. जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मजे में. प्रोग्राम बुदो प्या.
1: जी जी बिल्कुल.
0: अच्छा मुख्य ॿुधायो तव्हां मालूमात वरिती तव्हांजे एरिया में मिलनि पिया प्रोडक्ट जेके ॿुधायां पई. अच्छा चलो सही आहे. तव्हां मूंखे ॿुधायो त दोस्तनि खे यादि कंदा, कहिड़नि दोस्तनि खे शामिल कंदा? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच प्यारा भाउ, तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई. ओके जनाब, सो कॉलिंग नंबर 0332231322 एंड 88 नेक्स्ट कॉल. ॾिसूं था केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे. हैलो अस्सलाम वालेकुम. हैलो हैलो वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम, केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे? आवाज़ तव्हांजो सही न आयो, नालो ॿुधाइजो पंहिंजो. अच्छा अदा ठीकु आहियो, मज़े में? अलहमदिल्ला ठीक. प्रोग्राम ॿुधो पिया?
1: जी जी प्रोग्राम ॿुधायो.
0: अच्छा नालो अचे थो प्रोग्राम जो?
1: नालो
0: चलो चलो. अच्छा वाइट एश, वाइट एश ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम में ॿ

0: कीमियूं अथव जी। चलो कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा? चलो थैंक यू। तो ठीक है, मां शेला गुल के हलाईंदा। मुझा प्यारा बात अनुभव प्रोग्राम में तुम कॉल किया है। कॉलिंग नंबर है 0332132228। कोशिश कया पे तो जाम कॉलिंग वठा जी, तुम जाम कॉलर से प्रोग्राम में शामिल थी सको। सो ही वाली कॉल भी वठूं था जिसों केयर कॉलर से सगड़ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। केयर से सगड़ आप जहीर जुहेब कॉल किया लाड़काने का छाला। जुहेब ठीक आयो? अलहमदुल्ला ठीक ठाक। प्रोग्राम बुध पे असो जुहेब?
1: बिल्कुल,
0: रहमतपुर में बिल्कुल छोकरी भी कॉल कई। रहमतपुर में कौन था मिले? रहमतपुर में अवेलेबल कराई था। सही
1: आके
0: तेड़ दोस्त की याद कर जी जी चलो। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल कई सुहेब लाड़कानी खां। तुम भी कॉल करे सको था। कॉलिंग नंबर है 0332132228। नेक्स्ट कॉलर इज केर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम अली जिलूर का खालिक लाचारी गला।
0: ओके खालिक भाई, छाला कुछ आयो?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मजे में प्रोग्राम बुधो पिया?
2: जी आदि प्रोग्राम आज मुकम्मल बुधो पे एको
0: नालो अच्छा पे प्रोग्राम मुझे जो
2: नालो
0: जबरदस्त जबरदस्त। तुम बुधा जो मुख्य रिजल्ट क्या मिले पे, तुम कड़ो प्रोडक्ट लगा पाया यो भी बुधा जो। सही है चलो जबरदस्त। कड़े दोस्त की याद कंदा? थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल कई प्यारा भा। चले जी माशाल्लाह, अजकल मु या शे नोटिस कई आहे तो मुझे जकी कॉलर्स आइन वो डाढा माशाल्लाह जकी न सुलझल थी विया आइन। और लाला के जी कॉल ड्रॉप थी वही माजरत। सो बिल्कुल तुम्हें ये टॉपिक ये फॉलो करना कर जिसका चीज तक पुछी वे उन्हें बारे में बुधाई ना करो। एंड कॉलिंग नंबर है 0332132228। ही वाली कॉल उठूं था जिसको केरस से सगड़ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केरस से सगड़ आ है पप्पू चांदियो? अच्छा प्रोग्राम बुधो पे पप्पू भाई? हाँ माना बुधो जी जी जी। अलाए छा पे चो? हाँ थैंक यू सो मच तुम आवाज अलाए छो, मुख्य कुछ समझ में न पो अचे। सो मोर मोबाइल तू पप्पू भाव भाव। नेक्स्ट कॉल वटू था। कॉलिंग नंबर आई 0332132228। शायद ही कॉल मुख ड्रॉप थी हुई। सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: के रसे सगड़ा एरो प्यार संग अलाए
2: तो काम आला सोलगी ता
0: चल मुख यो बुधाय तो नवाजे एरिया में प्रोडक्ट मिला था जिनके बारे में बुधाया थी
2: यो मिले कोन तो भटारो
0: अल्लाह यो रकम सही ना है ना दिस
2: पर नंबर बुधा
0: जी जी इन मानू से जरूर गाल एरिया में जल्दी अवेलेबल करा छी प्रोडक्ट।
2: हाँ जी जी आती।
0: चलो प्यारा भा तुम सगा सुठो लगो दोस्त की याद कंदा जी थोड़ो गाय दिखारो तो सर्च कर चलो ठीक है मां दिसा थी जी जी मिलियो तो ताज ले ले चलो
2: मैं
0: ओके ओके। थैंक यू सो मच प्यारा भा प्रोग्राम में कॉल कई माशाल्लाह इलाही सुठो कॉलर हो। और बस कॉल इस तई वठंदासी हाने कॉलर्स के जेको थोड़ो रेस्ट कराई ताई ये एकड़ी कॉल वठी दिसो ला शेड्यूल चवे थी। सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।

हेलो अस्सलाम वालेकुम. नेटवर्क इशू. ओके सो बस हाँ कॉलर्स अगेन थोड़ा तुम रेस्ट कर वरी इनशाला सुबह तुम कॉल्स वी प्रोग्राम आहे जनाब असो पैंजो सोनो सोनो प्रोग्राम में तुम सोने सोने थे गाल बुधाइंदा वाई चेशन टी स्किन ब्यूटी शो है वाई हिंदी स्किन ब्यूटी है जनाब अस

राजा कश्यप कहते हैं कि आप ही सिद्धो आए शो में और कश्यप ना आए ये हो नहीं सकता, आप ही निगर्ट का गाना लगाइएगा अच्छा सा। और आप ही मेरी कजन है महनू, रुबाब, किंजा और मेरी सिस्टर है अलीजा, फिजा और माविजा, आपका बहुत शौक से शो सुनती हैं हर रोज और कहती हैं कि इनमें सबको दिल से वेलकम करें, ये सब आपको सलाम दे रही है। वालेकुम अस्सलाम, प्यारी परियों को दिल से वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बतों का।

इरम भी हमारे साथ मौजूद है. इरम, आपको भी हम वेलकम करते. कहती माँ घोर थिया मुझे प्यारी दिलबर दोस्त. अच्छा कहती है वाइट एश ब्यूटी क्रीम बायोकोन इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं. बिल्कुल जी, आप इस्तेमाल कर रही हैं, आप इसी वजह से ये कह रही हैं. और उसके अलावा ये भाई कोई पूछ रहे हैं कि आपका फेसबुक पेज क्या है. तो हमारा फेसबुक पेज है जी लाड़काना FM 88.8. सर्च कीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा. अच्छा कश्यप कहती है मुखे साड़ तो थी तो मुझे काल छोड़ नहीं लगे. साड़ ना क्यों बाबा. कॉमेंट्स आहिन तव्हांजा, कुझु कॉमेंट्स पढ़ंदासीं. लॻे पियो त जेके माण्हू कॉमेंट कनि पिया वीचारा चवनि पिया असां सुखी वियासीं, बाक़ी तव्हां असांजो कॉमेंट नथा पढ़ो. और ये किशोर भाई कहते कि अदी कराची में सदर टावर मार्केट में क्रीम पहुचायो त असां बि कॉल ते सच सच ॻाल्हाए सघूं. चले बिल्कुल, सदर में असां अवेलेबल करायूं था इहा क्रीम, सभु अवेलेबल कराईंदासीं. सही आहे.

बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गाना है, गाना सुनेंगे और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे जनाब कि आपका हमारा जो साथ है ना वो बिल्कुल यहीं तक था, क्योंकि आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त जो है ना वो बिल्कुल करीब आ चुका है। गाना लगाए तो आप सोचेंगे कि भाई थोड़ा सा गाना भी सुनने दे दिया करें जालिम, तो बिल्कुल गाना सुनेंगे। और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद उन तमाम लोगों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया, और जो लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। प्रोग्राम सुनते हैं साइलेंट होगी या फिर शामिल होकर बता देते हैं, आप सब लोगों का ढेर सारा शुक्रिया। और वाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों का अपना प्रोग्राम है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं। प्रोग्राम भी आप लोगों का अपना है तो आप जरूर से बता दिया करें कि आप हमारे साथ साथ। और वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स है ना ये सारे आप इस्तेमाल करके देखिएगा, उसके अलावा टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप ट्राई करके देखिए, बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, इस्तेमाल कीजिए, लगाते रहिए, खूबसूरत होते जाइए और दुनिया को बता देंगे भाई जान आप भी हसीन है। ओके सो वरीन सलाह तहां से मुलाकात मुझे सुभाणी थियण वारी आहे, सो पांजो ओ हिडो सरो ख्याल रखना, किथे का गलती थी हुजे त मां माजरत कया पर, सो मोकलाणी नाही बाबू सन सलामत, सा सलामत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज.
2: It's 3 PM. This time check is brought to you by.
3: जड़े माँ पांचो ख्याल रखन दिया है, तो सेहत नस्लन ताई हलन दिया है. ही पेगाम कश फाउंडेशन एंड कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो.
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज.
5: बाबत सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के गुमराह कदर करार दई रद्द करे छियो. परे खाते मुजिब इस्लामाबाद गालिन जे लाए अमेरिका ईरान जा केतरा ही जहाज पाकिस्तान पहुंचा, जिन जो मकसद सफारती अमले सिक्योरिटी टीम्स ए गालिन वाले अमल के आसान बनाइण हो. कुछ जहाज अमलो गालिन जे बे दौर के नजर में रखे पाकिस्तान में ही मौजूद रहा. बो दौर अजा बाजाबा शुरू ना थे, पर आला सतह सफारती राबता जारी आन. ईरानी परे वजीर जो पाकिस्तानी दौरा भी मौजूदा इंतजामी लॉजिस्टिक सहूलतन जरिए मुमकिन थो. पाकिस्तान में मौजूद ईरानी जहाज भी जंग बेदी दौरान आयो हो, जो कें भी किस्म की फौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती कदम से ताल्लुक ना है. खैरन के बदल बयानी जो मकसद इलाका इसकाम अमन वाले कोशिशों के नुकसान पहुंचाना है.

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: हाँ, हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पांजो मुकम्मल चेकअप करायो और होम्योपैथिक इलाज से कुदरती शिफा हासिल करो। सेहत तंदुरुस्ती की नई राह से गामजन थो तो देर छो? अवे शहर सकरडमी मशहूर व मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो जिगर गुर्दे पिते की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ है अधमथे जो सूर अखिन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज किया वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जा

जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबुह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई बरोज जुमू मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण। वधिक मशोरे ऐं राबते जे लाइ 0327 99 84 760 63।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: Japan. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White H Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White H Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White H Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो.
4: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
6: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो. सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे, पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे. होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे. एड्रेस: सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन. वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763.
7: सिंध के माथे का झूमर,
8: DFM 88 नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज़.

0: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: भाई हमने तो ये देखा है कि लड़कियों की जिस जगह शादी होती है उस घर को वो जन्नत बना दे।
2: जाओ जी सब तैयार, ये घराना है शाहकार।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजगी पंचन मिनटन ते 88 नेटवर्क ते।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: क़ौमी मुफ़ादनि मूजिबि फ़ैसिलो कयो वेंदो. ईरान ख़िलाफ़ अमेरिकी ऐं इसराइली जंग में UAE बि शामिल हो. अमेरिकी मैगज़ीन वॉल स्ट्रीट जर्नल जी छिरकाईंदड़ रिपोर्ट. वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिबि जंग दौरान गलियल अरब इमारतुनि ईरान जे लामान बेट ते ऑयल रिफाइनरी खे निशानो बणायो, जंहिं सबबि रिफाइनरी खे बंदि बि कयो वियो. हमलो अप्रैल में अहिड़े वक़्त ते कयो वियो, जंहिं वक़्तु अमेरिकी सदर ईरान सां जंगबंदीअ जो ऐलान करण वारो हो. जंग में शमूलियत ते UAE जी शमूलियत ते अमेरिका ख़ामोशीअ सां आजिया कई. जवाब में ईरान बि UAE ऐं कुवैत ते हमला कया. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि मुल्की एक्सपोर्ट बाबति इजलास. वज़ीर आज़म जी नंढे ऐं विचोले कारोबार ऐं सरहदुनि खे सहूलियतूं फराहम करण बाबति हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत. शहबाज़ शरीफ़ चयो त एक्सपोर्ट ते वधल सनत ऐं मुल्की तरक़ीअ जा हदफ़ हासिल करणु अनटर आहिनि. हुकूमत जो समूरो ध्यानु एक्सपोर्ट में वाध ऐं सनतुनि खे सहूलियतूं ॾियण ते आहे. एक्सपोर्ट में वाध जो कारण बणजंदड़ नवनि कारोबारनि ऐं सनतुनि खे हथी ॾियण जे लाइ रिथाबंदी कई वञे.
4: पर हैं इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट, काउंसिल गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, फुल कॉम, सब एक पेज पर. कोई आपस में कोई डिफरेंसेस कहीं पे नहीं है. ये फॉर्म गैप तक, सोशल मीडिया गैप तक जो है, ये खबरें आ रही होती हैं. आप देखिए कि मुल्क के जो सबसे बड़े आईनी अहदे पे बैठे हुए हैं, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट पाकिस्तान, उनकी सेहत के बारे में झूठी खबरें कभी, और ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा का हिस्सा है. इसका हकीकत से कोई ताल्लुक मकामी हुकूमत में कोई मसूदा शेयर नहीं किया. आनी नहीं आनी ये पता नहीं है. आप उस मिशन की तकसीम भी लेकर आ गए. सदस्य की तकसीम किसी भी सूरत में नहीं होगी. कुछ भी हो जाए, 28 में आए या 2800 तब्दील में आ जाए, सिंध की तकसीम किसी भी सूरत में नामुमकिन है. ना कोई कर सकता है, ना हम होने देंगे.
3: वफ़ाक ऐं सिंधु हुकूमत विच में इख़्तिलाफ़नि वारियूं ॻाल्हियूं बेबुनियाद आहिनि. वफ़ाकी हुकूमत ऐं सिंधु हुकूमत हिकु पेज ते आहिनि. 28 तरमीम अचे या 29, सिंधु खे केर बि ऐं कॾहिं बि विरहाए नथो सघे. कैरपुर में पीपल्स बस सर्विस जे इफ़्तिताह वारी तक़रीब खे ख़िताब ऐं मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जी लिना मेमन चयो त GDA खे फाल करणु सुठी ॻाल्हि आहे. सिंध में पीपल्स पार्टी जो केर बि मुक़ाबिलो नथो करे सघे. सिंधु हुकूमत पाकिस्तान में सभिनी खां वधीक ऐं सुठो कमु करे रही आहे. सुठे कम बावजूदि पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद कई पई वञे. सोशल मीडिया ते मुहिम हलाई पई वञे. शर्जी लिना मेमन खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस जो इफ़्तिताह बि कयो. असेंबली सूबे में गैस जी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ ठहराव या किराए सां मंज़ूर करे वरितो. सूबे में गैस जी लोड शेडिंग बंदि करण जो मुतालबो. MPA मोहम्मद अवेस पारां पेश कयल ठहराव जी हुकूमत MKM मेंबर्स बि हिमायत कई. गैरत जे नाले ते औरतुनि जे क़तल ख़िलाफ़ बि ठहराव या किराए मंज़ूर कयो वियो. बिल्किस मुख़्तार चयो त सिंध असेंबली कानून त मंज़ूर कया आहिनि पर उन्हनि ते अमल नथो थिए. सूबे वज़ीर रज़ा पेजू चयो त असां गैरत जे नाले ते औरतुनि जे क़तल ख़िलाफ़ ठहराव जी हिमायत कयूं था. सिंध में कारोकारी जा जरगा छो थियनि था. तंजीला कमराणी चयो त कंहिं बि रस्म तहत औरत जो क़तल क़बूलण जोॻो नाहे. पंजाब जो मक़सदु सफ़ारती अमले, सिक्योरिटी टीम्स ऐं ॻाल्हियुनि वारे अमल खे आसान बणाइण हो. कुझु जहाज अमलो ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर खे नज़र में रखंदे पाकिस्तान में ई मौजूदु रहिया. ॿियो दौरु अञा बाज़ाबता शुरू नाहे थियो, पर आला सतही सफ़ारती राब्ता जारी आहिनि. ईरानी परदेह वज़ीर जो पाकिस्तानी दौरो बि मौजूदु आहे. इंतिज़ामी ऐं लॉजिस्टिक सहूलियतुनि ज़रिए मुमकिन थियो हो. पाकिस्तान में मौजूदु ईरानी जहाज बि जंगबंदी दौरान आयो हो, जंहिंजो कंहिं बि क़िस्म जी फ़ौजी हंगामी सूरतहाल या हिफ़ाज़ती क़दमनि सां तालुक नाहे. ख़्यालनि ते ॿधल बयानीअ जो मक़सदु इलाइक़ाई सहकाम ऐं अमन वारनि कोशिशुनि खे नुक़सान पहुचाइणु आहे.

0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी क़यादत के बेईमान ऐं बार बार मौक़िफ़ तब्दील कंदड़ करार ॾेई छॾियो। तेहरान ते रचाया यूरेनियम कढण जी इजाज़त ॾियण वारे वाइदे तां बि पोइते हटण जो इल्ज़ाम लॻाए छॾियो। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान अमेरिका जंगबंदी वेंटिलेटर ते आहे। तेहरान ॻाल्हियुनि ते इतफ़ाक़ करण बाद फिरी वञे थो, कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदासीं। तेहरान सां अञा बि वाइदे जा इम्कान मौजूदु आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे, पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
5: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hemet Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hemet Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो. सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो. अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़न जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे. होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे. एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन. वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763.
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां. GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब।

0: ये 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे,
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: बहजो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
4: GFM 90.8।
5: जरूरी थोड़ी है कि आप जिस चीज में अच्छे हो उसी को अपना करियर बनाएं। I realized I was made for music.
6: जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम वो सब कुछ करोगे और सुनोगे जो मैं चाहूँगा।

0: परवरिश देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।

पंजाब में औरतुनि खे हिन सां कंदड़नि सां का बि रियायत न थींदी। औरतुनि लाइ पंजाब खे महफ़ूज़ बणाइण मुंहिंजी पहिरीं तरजीह आहे। लाहौर में तकरीब खे ख़िताब कंदे पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ चयो त औरतुनि जी ऑनलाइन हिरासमेंट रोकण लाइ बि निज़ाम जोड़े रहिया आहियूं। वालदेन बि हिरासमेंट वारे मामले ते धीअरनि जो साथ ॾियनि।

सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ताजन नतीजन खिलाफ सिंध असेंबली में ठहराव जमा साल 2024 की जारी कल चटाभेटी इम्तहान जहा नतीजा मुअल कर मुतालबो इम्तहानी अमल मार्किंग ए मेरिट लिस्ट की शफाफ जांच लाए पंजाब की फॉरेंसिक लैब का जांच करण की घुर करप्शन ए मेरिट की लतार साबित थे कार्रवाई का मुतालबो ठहराव एमक्यूएम के एमपीए मोहम्मद मास महबूब पारा असेंबली के सेक्रेटरी वट जमा कराया गया।

सिंध में कणक जो नओं फसल लहण बावजूद अटे जे अघनि में रिकॉर्ड वाध। हैदराबाद में वापारियुनि अटे जे फी किलो अघ ते हिक धक में 15 खां 20 रुपियनि ताईं वाध करे छॾी। हैदराबाद में 105 खां 110 रुपया फी किलो विकिरो थींदड़ अटो 120 खां 130 रुपियनि में विकिरो थियण लॻो। अटे जो 10 किलो वारो थेलो 1000 मां वधी 1300 रुपया थी वियो। पोरीअ तबिको सख़्त परेशान। हैदराबाद जे ज़िले इंतिज़ामिया अटे जे अघनि में वाध जो न नोटिस वरितो न ई को कदम कयो।

हथियारबंदन हथा नौजवान कतल एक जख्मी हथियारबंदन लाखो रोड ते फायरिंग करे नौजवान सवाली बाजारी के कतल कयो मुबारक बुक्टी जख्मी थी पियो पुलिस जो चवणा है त वाकियो बाजारी बिरादरी जी बिन धुरियन में जारी है।

0: कराची जे गार्डन वारे इलाके में अंकल सरिया अस्पताल भरसा फर्नीचर मार्केट के बाय लगी वही समूरो सामान सड़ी रखती वो सा भूसाट चढ़ सबब ब जना बेहोश फायर ब्रिगेड पारा बाय विसायण बाद कूलिंग जो अमल जारी रेस्क्यू अमलदारन मूजिब बाय विसायण वारे अमल में 10 वाटर टेंडर हिस्सो वरतो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, मोटरसाइकिल। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
5: हाँ हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पांजो मुकम्मल चेकअप करायो होम्योपैथिक इलाज सा कुदरती शिफा हासिल करियो। सेहत तंदुरुस्ती जी नई राह ते गामजन थियो तपोए देर छो अवाजे पांजे शहर सकरडमी मशहूर व मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो जिगर गुर्दे पिते की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ है अध मथे जो सूर अखिन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई बरोज जुमू मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण। वधिक मशोरे 0327-99-84-700

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: क्या देख रहे हो?
4: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: करता हूँ।
1: एक दिन इन छोकरे जो जासूसी माराईंदी असांखे
0: पता लगाता हूँ इसमें क्या राज है। जासूस जासूस
2: असाया पानी साफ ना है तेंजे करी तो सब बीमार था चाहो। असांखे पानी ए सफाई बिनन जो ख्याल रखन गुरजे।
1: केडो सयानो पुत्रा मुंजो
2: बाबा इयो ही जासूस तांगे बचाइंदो।
3: साफ पानी महफूज जिंदगी दस्तन खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखिन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 5 PM ताई बरोज जुमू मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण। वधिक मशोरे ऐं राबते जे लाइ 0327-99-84-763।
8: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: छा अमा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
6: ढाडो सुठो
5: जीए FM 88 नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: at 6:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: सजो डी दिसा थी तो के परेशान घुमंदी रही आ, बहरो बहरो मा थी रही आ ही ना, मुझो भी इयो ही हाल हो.
4: खबर ना है तो आही सब कुछ किया कियो नानी, मा ता एतरो थकी थी पवा, छा कयो हो तवा.

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज़ न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: छा अमा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहा भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीए हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क।

0: लबायरा पोतल औरत माच जगवाड़न शीमा करमाणी ए बेन के गिरफ्तारी दौरान तजलील जो निशानो बणायो पियो हो। सागई पुलिस अज मंशियात फरोश औरत के प्रोटोकॉल ॾींदे नज़र आई।
1: पब्लिक सर्विस कमीशन के ताज़न नतीजन खिलाफ़ सिंध असेंबली में ठहराव जमा। साल 2024 जारी कल चटाभेटी इम्तिहान जहाँ नतीजा मुअत्तल करने मुतालबो। इम्तिहानी अमल मार्किंग ए मेरिट टेस्ट की शफाफ जांच लाए पंजाब की फॉरेंसिक लैब का जांच कराने की घुर। करप्शन ए मेरिट की रफ्तार साबित थे कार्रवाई को मुतालबो। ठहराव एम क्यू एम के एम पी ए मोहम्मद बास महबूब पारा असेंबली के सेक्रेटरी वट जमा कराया वो।
0: सिंध असेंबली सूबे में गैस की लोडशेडिंग खिलाफ ठहराव मंजूर कर वरतो। सूबे में गैस की लोडशेडिंग बंद करने जो मुतालबो। एम पी ए मोहम्मद अवेस पारा पेश कल ठहराव की हुकूमत एम क्यू एम मेंबर्स पे हिमायत कई। गैरत के नाले से औरतों के कत्ल खिलाफ भी ठहराव मंजूर। बल्कीस मुख्तार सिंध असेंबली कानून तो मंजूर कया पर उन्होंने अमल न तो थे। सूबाई वजीर अजरा फजल पेचूह जो चवण हो तो गैरत के नाले से औरतों के कत्ल खिलाफ ठहराव की हिमायत क्यों था। सिंध में कारोकारी जहा जरगा छो थन था। तंजीला कमरानी जो चवण हो तो कें भी रस्म तहत औरत जो कत्ल कबूलण जोगो ना है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। सचल की सरमस्त धरती
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे SPF 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धब्बा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आरबुटिन जेके ॾियन तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो। रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद। हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम।
3: अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर हेमे नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ्फुज़ दे, कोजिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी ग्लूटाथायोन और आर्बुटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आपको दे एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमे नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो एक नया कॉन्फिडेंस। पिंक डायमंड ग्लो बाय हेमे नेचुरल्स।

अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ्फुज़ दे, कोचिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। पिंक डायमंड ग्लो बाय हेमी नेचुरल्स।

0: हाँ नरम चमक ऐ साफ जल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेमे शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुकसानकार किरणन खा बचा लाए कोजिक एसिड ऐ जल्द मा दाग धब्बा निशानात खत्म कर लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐ आर्बुटिन जेके डियन तवा जे चेहरे के कुदरती साफ ऐ चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम आई हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे हिक नो ग्लो हिक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स जीएस अखर एफएम 88 जी लाइव स्टूडियोस का प्रोग्राम रौनक महफिल सान करे आवा हां आज पंजो मेजबान बाबर शेख इन्हीं उम्मीदन साथ आवा बिल्कुल ठीक ठाक हुंदा अल्लाह पाक आवा सबनी ते पंजी रहमतन जा साया बरकरार रखे आवा जिते हो जो खुश हो जो आबाद दोस्तों बिल्कुल रौनक महफिल प्रोग्राम आहे जी एस अखर एफएम 88 आहे आए जी एफएम नेटवर्क आहे अठे वगे ताईं अहां जो असांजे साथ में प्रोग्राम है इंशाल्लाह अॼु भी जारी रहणो आहे तारीख़ जी अगर ॻाल्हि कयां त 12 मई 2026 तारीख़ आहे ऐं आंगारे जी शाम आहे 7:13 टाइम थियो आहे यानी प्रोग्राम मां बिल्कुलु लाइव ॿुधी रहियो आहियां मूंखे ख़बर आहे त एवरी ट्यूसडे प्रोग्राम में सेगमेंट हूंदो आहे ॻाइण वॼाइण जेको अव्हांजो तमामु घणो फेवरेट सेगमेंट त दोस्तों हिन ॻाइण वॼाइण सेगमेंट में अव्हां पंहिंजी प्यारी प्यारी मिठड़े मिठड़ी आवाज़ में असांखे गाना ॻाए करे मोकिलींदा आहियो जेके मां प्रोग्राम में शामिलु कंदो आहियां जेके हेमे ब्यूटी क्रीम ते हूंदा आहिनि ऐं वरी मां अव्हांखे वॼाए ॿुधाईंदो आहियां उहे गाना जेके अव्हां फरमाइश कंदा आहियो जी हा यानी अव्हांजी फरमाइश बि सेगमेंट आहे प्रोग्राम त दोस्तों बिल्कुलु सिंपली तव्हांखे करिणो इहो आहे त तव्हां पंहिंजे प्यारी प्यारी मिठड़ी आवाज़ में असांखे गानो ॻाए करे ॿुधाईंदो जेको हेमे ब्यूटी क्रीम ते हूंदो उहे नाला मां नोट करे वठंदोसीं आख़िर में वरी वोटिंग वारो सिलसिलो बि कंदासीं इनशाला अवां लाइव कॉल या वाट्सअप जे ज़रिए मूंखे जॉइन करे सघंदव असांजो लाइव कॉलिंग ऐं वाट्सअप नंबर आहे 03000113488 ऐं मैसेज बि तव्हां सेंड करे सघो था मैसेज जे लाइ एस के आर लिखो स्पेस ॾियो पंहिंजो मैसेज 8881 ते यानी 8881 ते सेंड करे छॾियो ऐं फेसबुक ते ॿुधण जे लाइ असांजो फेसबुक पेज आहे FM 88 ठीक है उत्ते अची करे तव्हां ॿुधी सघो था गॾो गॾु दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीउ स्पॉन्सर शो आहे अवां ताईं पहुचाइण लाइ तावन कयो आहे हेमे नेचुरल्स वारनि त हेमे नेचुरल्स वारनि जो पैगाम बि जेको मुंहिंजे ज़िमे आहे अवां ताईं पहुचाइण उहो तव्हां ज़रूरु ॿुधंदा हलो बिल्कुलु हेमे नेचुरल्स वारनि दावा कई आहे त हिननि जी प्रोडक्ट आहे हेमे ब्यूटी क्रीम जंहिंमें शामिल आहे SPF 30 कॉजिक एसिड ग्लूटाथायोन वाइटामिन सी आर्बुटीन ऐं ॿिया केतिरा ई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जेके अवां जे चेहरे जी स्किन जे लाइ तमामु घणा फ़ाइदेमंद आहिनि बिल्कुलु दोस्तों हेमे ब्यूटी क्रीम जंहिंमें शामिल आहे SPF 30 अवां खे सन प्रोटेक्शन ॾिए पियो कॉजिक एसिड चेहरे तां दाग धब्बा निशानात जो ख़ात्मो करे पियो ग्लूटाथायोन वाइटामिन सी ऐं आर्बुटीन अवां जे चेहरे जी स्किन खे कनि पिया बिल्कुलु नेचुरली ग्लो जी हा अवां जे चेहरे ते अगरि जेको आहे त नेचुरल ग्लो नाहे अवां जे चेहरे ते दाग धब्बा मोहिड़ा आहिनि ऐं गॾो गॾु कुदरती निखार जी कमी आए तो या कमी पूरी थी सके थी सिर्फ हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से तुम जैसे इनके इस्तेमाल किया था तो 7 डेज के अंदर अंदर तुम्हें जो रिजल्ट मिले पे तुम पान पे अंदाजो लगे सो तो वाकई सही हेमे तो हेमे आए हमारे चेहरे के जैसे नेचुरली ग्लो मिल कुदरती निखार मिल तुम पान अंदाजो लगे सौ तो वाकई हेमे हेमे आए सही था चवन बिल्कुल मैं इन प्राइस की गाल क्या तो 330 रुपीज इन प्राइस है 330 to 360 वेरीज करे पी अवान शहर वेझे स्टोर से आसानी से तवे हेमे ब्यूटी क्रीम मिली सके थी जर इन मिले या मालूम घुर्ज अबाउट द प्रोडक्ट तो हेल्पलाइन नंबर से कॉल कर सो इन हेल्पलाइन नंबर है 03671354 07 जी हाँ नंबर वन सेकेंड रिपीट क्या पे तो जी आसानी से नोट कर सो 03-36-71-35-407 इन नंबर से कॉल कर हेमे ब्यूटी क्रीम के बारे में इन मालूम वी जी पुछी सो तो शहर के वेझे कड़े स्टोर से हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है सो दोस्तों अवे बुधाई तो हलां तो हेमे ब्यूटी क्रीम जो है इन जो तरीका इस्तेमाल जो इन्हें रिकमेंड किया उन अगर यह प्रोडक्ट इस्तेमाल कौ तो इन रिजल्ट मिली सके तो करो तो सिंपली हेमे ब्यूटी क्रीम तो पैर मेक श्योर करनी है तो तेजे वेझे दुकानदार का हेमे ब्यूटी वरती है दैन तुम रात रो सुम का पैर चेहरे के वॉश कंदा और चेहरे से हेमे ब्यूटी क्रीम लगाइंदा जिते दाग दबा मरड़ा होजन उत थोड़ी क्वांटिटी में तुम हेमे ब्यूटी क्रीम लगाइंदा सुम्ही रहा जैसे सुबह जो उठंद चेहरे के वॉश कौ तो तव्हांखे फील थींदो त वाक़ई यार इन जो रिज़ल्ट बिल्कुलु ऑसम आहे. ऐं तव्हां जॾहिं हिन खे इस्तेमालु कंदा रहंदव त विद इन 7 days तव्हांखे हिन जो रिज़ल्ट जेको मिलंदो न तारीफ़ जोगो हूंदो. त दोस्तो हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेकॾहिं जेको आहे हिन सां गॾु तव्हां पंहिंजी प्यारी प्यारी सेल्फी असांखे व्हाट्सएप ते सेंड कंदव त तव्हांजी उहा सेल्फी क़ुरानदाज़ी में शामिल थी सघे थी. ऐं एवरी वीक असां क़ुरानदाज़ी कंदासीं सेल्फी विनर ऑफ द वीक 500 rupees जो कैश इनाम मिलंदो. हाणे एवरी वीक त पंहिंजी जॻह ते पर हिन जेका आख़िरी क़ुरानदाज़ी थींदी न उहा थींदी हिन थर्सडे ते. जी हा, जेको आहे न खमीस ते थींदी क़ुरानदाज़ी छाकाणि त खमीस ते ही प्रोग्राम लास्ट हूंदो. देन असां कुझु पास कंदासीं छाकाणि त जेके स्पॉन्सरशिप करे रहिया आहिनि हैमे नेचुरल्स वारा उहे थोरा थकिजी पिया आहिनि. वेल इट्स ओके, कुझु टाइम लाइ असां बि साई पटंदासीं. ऐं तव्हां अगरि वधीक हिन मुतालिक़ को बि फीडबैक ॾियणु चाहियो त तव्हां हिन जे हेल्पलाइन नंबर ते ॾेई सघो था 0336-7135-407. नंबर वंस अगेन रिपीट कयां पियो 0336-7135-407. त तव्हां सेल्फीज़ जेके आहिनि धड़ाधड़ मोकिलियो त जीअं मां वेंदे वेंदे हिकिड़ी सुठी क़ुरानदाज़ी करे वञा ऐं मूंखे ख़बर पए त जिन जिन हैमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कई आहे उन्हनि प्यारी प्यारियूं सेल्फीज़ मोकिले हिन प्रोग्राम खे जेको आहे न बाक़ाइदा तौर ते सुठी मोट ॾिनी. ठीकु आहे, सो सेल्फी सेंड करण लाइ असांजो नंबर अथव 0300-11-34-88 0300-11-34-88 इन नंबर ते तव्हां सेल्फी असांखे सेंड करे सघंदव. सो प्रोग्राम में ॻाइण वॼाइण सेगमेंट आहे ऐं ॿियो सेगमेंट आहे जेको आहे अहां जी फरमाइश. सो इन ॿिन्हिनि सेगमेंट में तव्हां पार्टिसिपेट करे सघो था. हींअर प्रोग्राम जी शुरूआत में तमामु प्यारो प्यारो कलाम मां सभिनि जे लाइ प्ले करे छॾियो आहे सजाद अली जी आवाज़ में. ही ॿुधो ऐं मूंसां गॾु रहो रौनक महफ़िल में पूरे 8 वॻे ताईं.

0: सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे एजेंट्स जो आपको दे एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हैमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस।
1: एकड़ो ही वाइस नोट आए
2: प्रोग्राम बुध रहा हूँ, प्रोग्राम हले तो ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कंदा आयो सर। तुम बुधा सर, प्रोग्राम जबरदस्त हली रो है, प्रोग्राम में शामिल।

0: ही खूबसूरत थी ओ, आए है मे ब्यूटी क्रीम जो प्यारो रिजटवा, है मे ब्यूटी क्रीम लगाई मु चेहरो पांजो बनायो, चेहरे जी यारों के है मे ब्यूटी क्रीम वा। और वा मुझे कुछ दोस्तन लगारी पंप का जमा लाशारी ताजो प्रोग्राम बुद्धी रहे वा काठरी का दा गुलाम रसूल मरी विलेज वानव शाम यूसी वी क्या संग डिस्ट्रिक्ट लड़कने का असा जो प्यारो दोस्त अशरफ अली मिराली सज्जन अली मिराली तनवीर अली मिराली आसिफ चाचर लाड़काने का ताने प्रोग्राम बुद्धी रहे वा शराज अली बंगलानी मम बिलावल बंगलानी नडो दिलावर अली बंगलानी अयाज अली बंगलानी अस्सलाम वालेकुम या अली मद
1: वालेकुम अस्सलाम आला अली मदद अदा तांजी मेहरबानी भा इम्तियाज प्रोग्राम में शामिल थे तवा आई तवा जो वॉइस नोट जबरदस्त यार गान वडेन में तवा गानो गायो एकडो बियो वॉइस नोट आए बुधो ही छापया चवन
2: बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम सकबर सलाम वफा अब्दुल वहीद जतोई टेटी शाबेलो उम्मीद आत खुश हों तो खुशहाल हों तो यार तू छे वन गाल तो करी अस अगे दम तो वही बेली मेहरबानी कर छे वन गाल न कर हाँ केदी शदीद गर्मी आ पर असा के तुझो ये प्रोग्राम शुरू छो जन तो असा के का मनाई सो तो बाग बार छ दिल तुझो शो अद कलाक घंटो बुधना ढी बेहतरीन होंगी यार छे वन गाल न कर जे हेमी बीटी क्रीम रहा तो छन था तो भी एक कलाक यार मेहरबानी कजाए बाबा तुआरे इन प्रोग्राम का अस जिया नची तो बाकी गान वजाने जो सेगमेंट आ तो मैं थोड़ो गाइंदुम हेमी बीटी क्रीम अदा यार लगायो हेमी बीटी क्रीम अदा यार लगायो दाग धबन के ओ दाग धबन के यार वो भजायो हेमी बीटी क्रीम यार लगायो छो हाँ लाए हथ कयो थव हेमी बीटी क्रीम ताहे भली छो हाँ लाए हथ कयो थव हेमी बीटी क्रीम आहे भली वठी अचो भराए छली वठी अचो भराए छली चवे बाबर साहब बा बाबर साहब बाकी असा के फरमाश में मास्टर मंजूर जरूर बुधाई जो तो यार मुझे जो कुर्बानियों और बो गुलाब शाह सैयद मे याद कन्े खोड़ सरा सलाम गुलाब शाह सैयद के आसिफ चाचड़ लाड़कानी खाऊ मुझे भाव जहिर में जतोई मुझे भाटियो आयाद में जतोई बाकी जे बुधा वफा अब्दुल वहीद जतोई पर सजे सत के सलाम और असा छे न वजें बाबा वे हथ जोड़िया वे
1: साईं मोहब्बत हूँ यार अब्दुल वही जतोई साहब ये गालियों कर यार मुझे दिल भर जी सब हाँ रखे बेली गाना अड़ा तो बुध रहे हैं कुछ फासिलो इंशाल्लाह कोशिश कंदासी वरी जल्दी मोटी इंदासी तो टेंशन न कयो बाकी हेमे वारन के तुम कॉल करे उन्हें फीडबैक देख सको था इन प्रोडक्ट के बारे में बहरहाल जिन जिन इस्तेमाल कई है वे बुधा सकन था तो कि लगी और तकरीबन सत महीना थी यार इन स्पॉन्सरशिप कई इन प्रोग्राम के पा हलोसी मजो आया मुख्य टाइम स्पेंड करण में तमाम घो मजो इन्द है।

पांजू मोहब्बत जने मिलंदी वन दिल चोंदी आ त छडे वन्यण जो गालियों न कया ताजा गुड माके भी गान जण अच्छी वे आए सो ही आए मीर मिठल मक्सी फ्रॉम विलेज गुलाम हैदर डेरो नियर कंबर अली खान से चन एनी सॉन्ग ऑफ मंजूर सकीरानी डेडिकेटेड बाय अब्दुल खालिक साहब ठीक है खुदा बख्श डे पर डे पर जगह सलाम अदा नाइस प्रोग्राम अदा सही ममताज लाशारी जो सॉन्ग सुनाना ओके जो लिरिका खालिक लाशारी साहब उदन पे ममताज लाशारी प्ले कर वाणी बिन ने चवे ममताज लाशारी आई हिकड़ी ने चवे मास्टर मंजूर सकीरानी त पेरियो मैसेज मु पढ़ो मंजूर सकीरानी जो त यार मंजूर सकीरानी प्ले यहां पे पोए मां ममताज लाशारी प्ले कंदुस आई आवा के मां बुधाई दो लिसनर्स गान वजाने में तमा भी असा के ज्वाइन कर सको था हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ते तमा गाना गाए करे असांगे सेंड कंदो तो तुम कुरानदाजी में शामिल थी वेंदो आई सेल्फी विनर ऑफ द वीक के 500 रुपए जो केश इनाम हलंदो ठीक है तो तुम सेल्फी के लिए अच्छा परी इंशाल्लाह सुभाने अरबा है परी खमीस से इंशाल्लाह मां कुरानदाजी कंदम आई तुम जो सेल्फीज अनाउंस कंदो से 500 रुपए जो केश इनाम उनके मिलंदो जे सेल्फी मोकली आए कुरानदाजी जरिए ठीक है सो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम घर में हर फर्द लाइ फायदेमंद अदी हुजन तोड़े अदा हुजन इनके बेफिक्र थी करे इस्तेमाल करे सकन था आई विद इन 7 डेज तुम के जो रिजल्ट मिली सके तो तुम जो फायदो हासिल करे सगो था आई जे कने अहा इस्तेमाल कंदा अचो पे रूटीन लाइफ में शामिल करे छियो अथवा त वाह वाह साई वो ईद वारे दिन ते तवांगे को फैशियल वगैरह करण जी मां समझा जरूरत न पवंदी अच्छा त ही गानो बुधू पिया मंजूर सकीरानी जी आवाज में

हाँ नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे SPF 30 सिज जे नुकसानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं

0: चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुकसानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धब्बा निशानात खत्म करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आरबुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: जी लिसनर्स बिल्कुल ममताज लाशारी जी आवाज़ में आहे कलाम ॾाढो हाणे मूंखे सिर लॻे सोणे सॼण सां सिर लॻे यार वाह वाह अहिड़ा गाना मां हलाईंदोमांव न मज़ो अची वेंदव बहरहाल मूंखे त मज़ो अव्हांजे वॉइस नोट्स मां अचे पियो पर अलाए छो तव्हांजा वॉइस नोट्स बि जेके आहिनि मूंखे लॻे पियो ॾुख में घटिजी विया आहिनि आई डोंट नो वाई बट तव्हां हीअ ॾुखियल थी ॾुखायल थी वेंदो न पोइ ईअं न परीहं खमीस खां पहिरियां ई सुभाणे मां अचां बसि टाटा भाई भाई यार परीहं ताईं त हलण जो वेली ॿडी आहे सो लाइव कॉलिंग वारो नंबर ऑन कयो त मां तव्हां अचो लाइव कॉल जे ज़रिए बि मूंखे जॉइन करे सघो था असांजो नंबर आहे 03000113488 हिकिड़ो ही वॉइस नोट अचो त ॿुधो
2: अस्सलाम वालेकुम बाबर बादशाह आला कुछ आयो टाट मगर में अतावन मीरानी यूसी लाइक ऑन जस कण गुड डू में मीरानी मां चला रहे हो अला तव्हांखे ज़मान में रखंदो साईं तव्हांजे तव्हांजो ॻाइण वॼाइण प्रोग्राम आहे असांखे ॻाइण वॼाइण ईंदो न आहे बाक़ी हेमी बीटी क्रीम वी आई पी आहे ज़बरदस्त आहे असां इस्तेमालु कयूं था पिया साईं ताणी दाग दॿा मोड़ा मिटाए थी साईं ताणी असांखे को साईं सुठो गानो तव्हां पंहिंजी पसंदि ते ॿुधाइजो तव्हांजी महिरबानी थींदी डेडिकेट कयां थो साईं ताणी दोस्तनि मुंहिंजा अख़्तियार मीरानी बख़्तियार मीरानी साकिब गुल मीरानी जागर गुल मीरानी
1: हाज़ुर साईं खे चवाणी हाज़ुर साईं हाज़ुर तव्हांखे बिल्कुलु मां प्रोग्राम में ॿुधायां पियो ऐं गॾो गॾु तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां लिसनर्स त हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका आहे न इहा इस्तेमालु करे तव्हां चहिरे तां दाग धबा निशानात जो ख़ात्मो करे सघो पिया ऐं विद इन 7 days तव्हांखे हिन जो रिज़ल्ट मिली सघे थो जी हा ऐं तरीक़ा इस्तेमालु तव्हांखे मां ऑलरेडी ॿुधाए चुको आहियां गॾो गॾु हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका आहे जेको आहे तव्हांजे शहर जी शाही बाज़ार में तव्हांखे आसानी सां मिली सघे पई तव्हां दुकानदार खां आलो वठी खरीद करे सघो था जेकर न मिले या वधीक मालूमात लाइ तव्हां हिननि जो नंबर आहे उन नंबर ते कॉल बैक करे सघो था नंबर आहे 03367135407 जी हा 03361535407 इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे बारे में हिननि खां मालूमात वठी सघो था ऐं जी पुछी सघो था त तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे ठीक आहे सो जी हलूं था कॉलर जी तरफ़ ऐं लेट्स सी लाइन ते गॾु केरु आहिनि अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सर
1: अदा केरु था ॻाल्हायो भाउ केरु था ॻाल्हायो
3: साईं मोर खान मोहम्मद
1: खान मोहम्मद
3: जान मोहम्मद
1: जान मोहम्मद साहब साईं जान साहब छा हला ठीक आहियो अलाह जो शुक्र आहे साईं ॻाइण वॼाइण सेगमेंट आहे कुझु ॻाईंदो या असां कुझु वॼाए ॿुधायूं तव्हांखे असां वॼाए ॿुधायूं ठीकु आहे शमा मीराली ॿुधायांव जी जी नाला ॿुधायो दोस्तनि जा हलो ठीकु आहे सो दोस्तो अदा ज़वार मोहम्मद बचल शवाणी चए पियो वोट कराए बिल्कुलु भाउ यार सुठो यादि करायव दोस्तो जिन गाना ॻाया आहिनि उन्हनि में नाला शामिल आहिनि 3 ज़वार मोहम्मद बचल शवाणी साहबु इम्तियाज़ अली बंगलाणी साहबु ऐं वहीद जतोई साहबु इन ट्रेन मां तव्हां कंहिंखे वोट कंदव तव्हां हींअर लाइव कॉल जे ज़रिए शामिल थी वोट करे सघो था अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हलो केरु था ॻाल्हायो भाउ कॉल ते तवजा ॾियो चलो ही रेडियो ते पंहिंजो आवाज़ ॿुधणु चाहिनि पिया जेका अञा

0: हम जा रहे हैं कोशिश में एक रो ही वॉइस नोट आए।
1: अस्सलाम वालेकुम नबर भाषा अल्लाह खैर हो खुश हो मां इरफान लांगा सो जीरो फंड वाले हैं ता चाहे हो ना तो पाकिस्तान अच जो तो पो ता के एम ब्यूटी क्रीम जे किया हुआ ता के दीदम पर मां आयो मैं ता ने ता से रابطो भी ना कयो मुखे कराची में हुआ क्रीम ना मिली ठीक है ए भला टक्कर में वणो था भला खैर ता है
0: प्रोग्राम तो वह इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में मुलाकात शो है ना स्पॉन्सरशिप रुगो खत्म पी थे बाकी अस वेठा भा तुम टेंशन न कर एंटरटेन कंदा रहंदी ठीक है सो अवज मोहब्बतू बाकी तुम भी काफी अर्से का ज्वाइन किया खैर ताए बाकी तुम पाकिस्तान आया हो मुझे खबर ही कौन पई बहरहाल तुम भली कार चाहूँ था पाकिस्तान अचान ही वॉइस नोट
2: हेलो बवर भाई अस्सलाम वालेकुम कैड़ा हाल जी खुश हाँ दफा अमन मैं अब्दुलरहमान जागरानी तो गल खैर लगो है दफा अमन अस भी तैनल में शामिल थे चाहिए खैर लगो है दफा हेमन ब्यूटी क्रीम असार नी मिले या किथा मिली
0: वजाए छे यार हेल्पलाइन नंबर से कॉल कर पुछ हेल्पलाइन नंबर है 0336-7135-407 नंबर वन सेकेंड रिपीट क्या वहाँ पे हो 0336-7135-407 लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर केर आए अस्सलाम वालेकुम अदा केर था गलायो भा जी अदा हुसैन बख्श प्रोग्राम बुधो पिया चलो साईं बिल्कुल दुख पैंदी जगह ते बिल्कुल सही है मैं दुख दूर पे क्या हाने कॉलर से वधे खावा दे टाइम नी दोस्त ठीक
3: आ हां सिस्टम कॉल जरिए प्रोग्राम
0: जी जी जी जी साईं
3: स्पेशली
0: हाजिर साईं वोट के गंदो के सुठो गानो गायो आ शामिल जी जी
3: बिल्कुल सिस्टम
0: कि लगंदी तव्हांखे चलो साईं लख थोरा तां शामिल छा प्रोग्राम में वेलकम जी वेलकम तो दोस्तों एकड़ो बियो कॉलर शामिल कंदासी आई जवार मोहम्मद बचल शबानी साहब के वोट पे वाए अहां जी फरमाइश सेगमेंट में हियर जका फरमाइश बचिया हुआ शमन मीराली जी बचिया ठीक है वींदे वींदे शमन अली मीराली साहब जी आवाज में प्यारो गानो वांच ले प्ले कई थो ना अस्सलाम वालेकुम जी मंगरहाट साहब यो बुधायो के सुठो गानो गायो आ के वोट कंदाओ
3: बच्चन सभा में भलो गायो यो जबरदस्त जो प्यारो आवाज मिठड़ो मिठड़ो बोले तो हर नेत में
0: शमन मीराली पे जवार मोहम्मद बचल शंबाणी साहब के वोट पे यानी जवार मोहम्मद बचल शंबाणी साहब विनर हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम के बारे में मालूम दिनी है तमाम घनी फायदेमंद में शामिल है SPF 30 जो चेहरे के मां के स्पेशली सन प्रोटेक्शन दे पियो चेहरे ता दाग धब्बा निशाना जो खात्मो थे पियो तहां जी चेहरे ते जेका ग्लोइंग अचे पई कुदरती निखार अचे पियो उन जी गाल भी आए विद इन 7 डेज तहां के ने जो रिजल्ट मिली सके थो तहां जने इन के इस्तेमाल के वारे चेहरे के आर्टिफिशियल फेशियल जी जरूरत न पवंदी आई थिंक सो तहां ने के इस्तेमाल करे आजमाए सगु था जिन इस्तेमाल किया उन ने यही फीडबैक न आए बाबर बा वाकई तहां सही पिया चो त हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेकर हमारे शहर में अवेलेबल न हो जे तो आन जे हेल्पलाइन नंबर ते कॉल कंदो इनन जो नंबर आ ही 03336-7135-407 नंबर वन सेकंड मैं रिपीट क्या पियो 03336 71535470 इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हैमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में नंगा मालूमात वठी सघो था ऐं जी पुछी सघो था त तव्हां जे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे। सो जी कॉलर जी तरफ हलंदो साईं हीअ अॼु के प्रोग्राम जो लास्ट कॉलर आहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो मां जॾहिं बि लास्ट कॉलर अनाउंस कंदो आहियां न पोइ उहो कॉलर जेको आहे न थींदो आहे ईअं कीअं। अस्सलाम वालेकुम। जी केरु था ॻाल्हायो? जी अदा छा हाल आहे? ठीकु आहियो? अलहमदुल्ला। भाउ शमन मीराली जो गानो थो प्ले कयां, कंहिंखे डेडिकेट कंदव? चलो ठीकु आहे, तव्हांजी वॾी महिरबानी। त दोस्तो ज़वार मोहम्मद बचल शंबाणी साहिबु अॼु जे सेगमेंट ॻाइण वॼाइण जो विनर आहे ऐं ॿिया ॿ सिंगर जिन सुठा गाना ॻाया इम्तियाज़ बंगलाणी साहिबु ऐं वही अली चतोई साहिबु। त ज़वार मोहम्मद बचल शंबाणी साहिब जे नाओ ही प्यारो प्यारो गानो शमन अली मीराली जी आवाज़ में ऐं उन्हनि लिसनर जे नाओ जिन प्रोग्राम में शामिल थी करे हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ते ॻाइण जी कोशिश बि कई ऐं फीडबैक बि ॾिनी। तो अगले प्रोग्राम तक मुख्य दियो इजाजत। सदाई गड अल्लाह हाफिज़ ऐं जिंदगी बख।

0: हाँ नरम चमक आई साफ जल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुकसानकार किरणन खा बचा लाए कोजिक एसिड आई जल्द मा दाग धब्बा निशानात खत्म कर लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन आई आर्बुटिन जेके दिन तुम्हारे चेहरे के कुदरती साफ आई चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम आई हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे एक नो ग्लो एक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचर्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: अब आप सुनेंगे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: सबूत लेके आए इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान है तो सबूत के साथ आए तो सिंह असेंबली आपके साथ खड़ी होगी और कहेंगे मैं मैरिट नहीं हुआ है तो आप सबूत लेके आए एंटी करप्शन में केस रजिस्टर करवाए नैब को दें हम आपके साथ खड़े होंगे मगर ऐसे किसी पे इल्जाम लगाना चीफ मिनिस्टर पे चेयरमैन पे ही नाचाही सी है
3: ये जो सिफारशी कल्चर है ना हमारे यहाँ पहले ही बहुत ज्यादा है हमारे सूबे के अंदर तालीम के अंदर भी इसका बहुत असर रसूख है मैट्रिक के बोर्ड हों या इंटर बोर्ड हो उसमें भी प्रॉब्लम होती है अदालती कमीशन बनना चाहिए और इसकी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए
4: कि इसिन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो वसीम अहमद साहब हैं जो हेड हैं उसके वो पूरी तरह नाकाम मेरिट कायम करने में नाकाम होगा उनको इस्तीफा देना चाहिए और सिंध के नौजवान चाहे वो किसी भी शहर से ताल्लुक रखते हुए उनको उनका हक मिलना चाहिए
5: पूरे सिंध को किसी वडेरे की औकात की तरह चलाया जा रहा है जिन लोगों ने सीएसएस में 11 के 11 पर्चे फेल हुए थे जो लोग 11 के 11 पर्चों में वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में कमीशन ले रहे हैं
6: सिंध असेंबली में अपोजिशन एमपीएस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की चटाभेटी इम्तिहान 2024 के नतीजन शफाफ जांच कराने जो मुतालबो कर छो हुकूमती दौर के वजीर एमपीएस भी है तो रुगो इल्जाम से नहलन घुर्जे कें वट साबतू आन तो सामू आने इदारा मौजूद आन वो वजीर भी मामले के ऐसी रो है

0: जिकाते काजियाती थिया का गलत गाल थिया ने जो आजाद उठाए मुझे पुट अकबर अब्बास है फॉरेन रिटर्न भी है हाईएस्ट मार्क्स तो है रिटर्न इंटरव्यू में पास न थे या खबर द के तो नहीं पमा नासिर शाह जे पुत्र के जे गए पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरी लगी
1: के फोरम्स हूंदा जिते उनजी शिकायत जो आहे ॿुधी वञे
2: हाणे इहे मूंखे नाहे ख़बर को ही चीज आहे को कंहिं इन्वॉल्वमेंट आहे अगरि ग़लती सीएम साहब कॾहिं बि किथे बर्दाश्त न कंदो
3: आहे इस तरह की बात रेज हुई है तो इसका ज़रूर जो है डिपार्टमेंट जो है वो इसकी तह तक पहुचेगा और दिखेगा हम कभी भी नहीं चाहेंगे की हमारे नौजवान जो है उनके साथ कोई भी ग़लत हो
4: सिंध हुकूमत हिन खे जांच कराईंदी ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ऐं आवाम बि इहो ई चाहे थी त फ्री ऐं इम्पार्शियल अगरि इंक्वायरी थींदी त हुन में सचो साबित थी वेंदो ऐं जेकी शइ ग़लति हूंदी

चौथी दिनतान में मेरिट जी मुबैन अलतार खिलाफ़ सुभाणे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी ऑफिस अॻियां धरणे जो ऐलान उम्मीदवारनि सिंध यूथ एक्शन कमेटी वकील अॻवाणनि ऐं ॿियनि जी हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त मेरिट जी लतार खिलाफ़ सुभाणे अलामा दाऊद पोटो लाइब्रेरी खां एहतजाजी रैली कढी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी ऑफिस अॻियां धरणो हयो वेंदो। पंहिंजा नवाज़ी करे अहल उम्मीदवारनि जे हक़ ते धाड़ो हयो वियो आहे। केस दाख़िल कराइण सां आवाज़ दॿाए नथो सघिजे।

0: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ताज़ा नतीजन खिलाफ़ सिंध असेंबलीअ में ठहराव जमा साल 2024 जे जारी कयल चटाभेटी इम्तिहान जा नतीजा मुअत्तल करण जो मुताबिक़ो इम्तिहानी अमल मार्किंग ऐं मेरिट लिस्ट जी शफ़ाफ़ जांच लाइ पंजाब जे फॉरेंसिक लैब खां जांच करण जी बि घुर करप्शन ऐं मेरिट जे लताड़ साबित थियण ते कार्रवाई जो मुताबिक़ो ठहराउ एम क्यू एम जे एम बी ए एम पी ए मोमन मास महबूब पारां असेंबली जे सेक्रेटरी वटि जमा करायो वियो।
1: जे डिजिटल दौर में लैपटॉप का आसाइश न पर तालीम हासिल करण लाइ ज़रूरत बणजी वई आहे। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच सिंध में शागिर्दनि खे लैपटॉप फराहम करण लाइ 45 ॾींहं अंदरि पॉलिसी जोड़ण जो हुकुम ॾेई छॾियो। जस्टिस अमजद अली भोयो ऐं जस्टिस अली अदा हैदर लिखत में फ़ैसिलो जारी कंदे सिंध हुकूमत खे हुकुम ॾिनो त 45 ॾींहनि अंदरि पॉलिसी जोड़े स्कूल कॉलेजेस ऐं यूनिवर्सिटीज़ जे मुस्तहक़ शागिर्दनि खे लैपटॉप ॾिना वञनि। लैपटॉप स्कीम ईंदड़ माली साल जी बजट में भी शामिल करण जो हुकुम।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: छा अहां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्तु आहे चमकण जो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़नि सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़, नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरीं इस्तेमाल में फ़र्क़ महसूस करियो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज़।
4: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 खां शाम 5 ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे, पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधम मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-703।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर

0: सबूत लेके आए, इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान है, तो सबूत के साथ आए तो सिंध असेंबली आपके साथ खड़ी होगी, कहेंगे मैं मैरिट नहीं हुआ है, तो आप सबूत लेके आए, एंटी करप्शन में केस रजिस्टर करवाएं, नैब को दें, हम आपके साथ खड़े होंगे। मगर ऐसे किसी पे इल्जाम लगाना चीफ मिनिस्टर पे, चेयरमैन पे ही नाजायजी है।
1: ये जो सिफारशी कल्चर है ना, हमारे यहाँ पहले ही बहुत ज्यादा है, हमारे सूबे के अंदर तालीम के अंदर भी इसका बहुत असर रसूख है, मैट्रिक के बोर्ड हों या इंटर बोर्ड हों, उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अदालती कमीशन बनना चाहिए और इसकी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए।
2: मैं समझता हूं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो वसीम अहमद साहब हैं, जो हेड हैं उसके, वो पूरी तरह नाकाम, मेरिट कायम करने में नाकाम होगा, उनको इस्तीफा देना चाहिए और सिंध के नौजवान चाहे वो किसी भी शहर से ताल्लुक रखते हुए, उनको उनका हक मिलना चाहिए।
3: पूरे सिंध को किसी वडेरे की औकाक की तरह चलाया जा रहा है। जिन लोगों ने CSS में 11 के 11 पर्चे फेल हुए थे, जो लोग 11 के 11 पर्चों में, वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में कमीशन ले रहे हैं।
4: सिंध असेंबली में अपोजिशन MPS सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की चटाभेटी, इम्तिहान 2024 के नतीजन की शफाफ जांच कराने जो मुतालबो कर छो। हुकूमती धुर के वजीर ने MPS भी रुगो इल्जाम से न हलन घुर्जे, कें वट साबितू आन तो सामू आने इदारा मौजूद आन, वो वजीर भी मामले के ऐसी रो आ।
5: किथे का ज्यादती थी या का गलत गाल थी या उन्हें जो अजाल उथड़ गया। मुझे पुट अकबर अब्बास या फॉरन रिटर्न भी या हाईएस्ट मार्क्स थो यस रिटर्न इंटरव्यू में पास न थो, या खबर तो कें को नहीं दबा नासिर शाह जे पुट के जे काए पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरी न मिली।
6: के फोरम्स हों जिथे उन शिकायत बुधी वाले
7: हाँ ये मुख्य ना खबर को ये चीज आए को कें इन्वॉल्वमेंट आए, अगर होती तो सीएम साहब कभी भी चीज़ के बर्दाश्त न करो।
8: अगर इस तरह की बात रेज हुई है तो इसका जरूर जो है डिपार्टमेंट जो है वो इसकी तह तक पहुंचेगा और दिखेगा। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे नौजवान जो है उनके साथ कोई भी गलत हो।
9: सिंध हुकूमत इन्हें के जांच कराई थी, जाहरी गल आवाम भी यो ही चाहे थी, तो फ्री एंड इम्पार्शल अगर इंक्वायरी थी तो उनमें सचो साबित थी वो, जी शलत होंगी तो बदली।
10: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की ताजन नतीजन खिलाफ सिंध असेंबली में ठहराव जमा, साल 2024 की जारी कल चटाभेटी इम्तिहान जो नतीजा मुअत्तल करने जो मुतालबो, इम्तिहानी अमल मार्किंग ए मेरिट लिस्ट की शफाफ जांच लाए पंजाब की फॉरेंसिक लैब का जांच कराने की घुर, करप्शन ए मेरिट की लतार साबित थियण से कार्रवाई जो भी मुतालबो, ठहराव MQM के MPA मोहम्मद माज महबूब पारा असेंबली के सेक्रेटरी वट जमा कराया वो।
4: सिंध असेंबली सूबे में गैस की लोड शेडिंग खिलाफ ठहराव यक राय से मंजूर करे वरतो। सूबे में गैस की लोड शेडिंग बंद करने जो मुतालबो MPA मोहम्मद अवेस पारा पेश कल ठहराव की हुकूमत ए MQM मेंबर्स की हिमायत कई। गैरत के नाले से औरतों के कत्ल खिलाफ भी ठहराव यक राय से मंजूर किया वो। बिल्किस मुख्तार सिंध असेंबली कानून तो मंजूर किया पर इन अमल न तो थे। सूबाई वजीर अजरा फजल पेचो असा गैरत के नाले से औरतों के कत्ल खिलाफ ठहराव की हिमायत क्यूं था। सिंध में कारोकारी जहा जिरगा छो थन था। तंजीला कमरानी कें भी रस्म तहत औरत जो कत्ल कबूल जोगो ना।
10: वजीर आजम शहबाज शरीफ नार मुल्क में भाण की सप्लाई चेन मुतासिर थियण सबब एशियाई मुल्क में मुतबादल फरामिय की हिदायत कर छी। वजीर आजम आला सतही इजलास दौरान भाण के अतरादू कोर्ट ए जखीरो कंदड़न खिलाफ सख्त कार्रवाई जो हुक्म दीदे है तो लागापिल वजारतों ए इदारा भाण की फरामी की मुसलसिल निगरानी कन ए रबी तोड़े खरीफ लाए जजे मकदार में भाण जहा जखीरा यकीनी बढ़ाया वजन, गिजाई तहफुज यकीनी बढ़ाने लाए जरई शोबे जो जरूरतों पूरी करण हुकूमत की पेरी तरजीह है।

0: सब एक पेज पर हैं इस वक्त, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, पूरी कौम सब एक पेज पर है, कोई आपस में कोई डिफरेंसेस कहीं पे नहीं है। ये अफवाहों की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक जो है ये खबरें आ रही होती हैं, आप देखें कि मुल्क के जो सबसे बड़े आईनी अहदे पे बैठे हुए हैं हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी सेहत के बारे में झूठी खबरें कभी, और ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी हुकूमत ने कोई मसूदा शेयर नहीं किया, आनी नहीं आनी ये पता नहीं है, आप उसमें सिंध की तकसीम भी लेकर आ गए, सिंध की तकसीम किसी भी सूरत में नहीं होगी, कुछ भी हो जाए, 28वीं आए या 28वां 2800 तकमी में आ जाए, सिंध की तकसीम किसी भी सूरत में नामुमकिन है, ना कोई कर सकता है, ना हम होने देंगे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी, मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी, मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो, सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो, त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ है, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-9984-763।
4: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
5: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।